प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग, प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है, यूनिट नंबर 2120-3961 52 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी, कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11-2316-27 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। पंजाबी रेडियो 102.7 FM।

प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: कैनेडियन स्क्रू फाइल्स के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू फाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R Roofing and Siding Limited दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R Roofing and Siding Limited। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा, यूनिट नंबर 1130, 4818 वेस्ट विंड ड्राइव, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कैलगरी च 24 घंटे 7 दिन चलन वाले इको एक धार्मिक पंजाबी रेडियो 102.7 FM तो हुन सर्वन करो जी आद गुरु जुगो जुग अटल सत गुरु तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा सच खंड श्री हरमंदर साहब श्री अमृतसर साहब जी विखे होया अज अमृत वेले दा मुख वाक ते व्याख्या। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

0: अपरंपर पुरख अपारी जन कौ कृपा करो जग जीवन जन नानक पैज सवारी हर हर अगम अगाध बोध अपरंपर पुरख अपारी जन कौ कृपा करो जग जीवन जन नानक पैज सवारी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतगुरां दी पावन पवित्र चरण शरण दे अंदर सुभाए मान गुरु सुवारे प्रेमी सतसंगी जनों वड भागे हो आप जी सतगुरां दी पावन हजूरी विच सत संगत करन दा सुभाग आप जी नूं प्राप्त होया है। पावन पवित्र बाणी दे शब्द कीर्तन गुरु सुवारे गुरु के कीर्तनिया पासों आप जी ने सरवन कीते हन। अमृत वेले सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी दे अंदर तख्त ते सुभाईमान होके धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सचे पातशाह जी ने जो मुख वाक साडे सारियां उत्ते कृपा कीती है। धन धन गुरु रामदास पातशाह जी दा तनासरी राग दे अंदर ये शब्द उचारण कीता होया गुरु ग्रंथ साहिब जी दे मुबारक अंग 666 ते सुभाईमान है जिस दा मूल पाठ आप संगता ने सरवन कीता है। इस पावन शब्द दी विचार गुरु कृपा द्वारा आप सारे मिलके सांझी करांगे। रोजाना आप जिथे मुख वाक दी कथा सरवन करदे हो सतगुरां दी पावन बाणी दी लड़ीवार विचार भी कीती जांदी। अज आप जी ने कीर्तन राई जो अरदास दो वारी सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी दे अंदर हुई है ये बार बार बचन सरवन कीते हन। तख्त है राजा सोब है जे तख्त है लायक होई। अज धन धन साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह जी दा गुरियाई पुरब है नाल ही गुरमुख प्यारे गुरसिख भाई लालो जी दा अज जन्म दिहाड़ा भी है। उन्हां दे जन्म दिहाड़े नूं मुख रख के गुरमुख प्यारिया ने संगती रूप विच ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਅਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਓ ਆਪਸ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਸਾਏ ਹੋਏ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 1534 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਸਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਪਈ ਜੇ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾਨੀ ਦੋਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਸਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ 1541 ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ। ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ 12 ਸਾਲ ਜਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਗਰ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਕੇਵਲ ਗਾਗਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜੋ ਅੰਕਸ ਹੈ, ਅਹਿਰਨ ਜੋ ਸਿਰ ਦੇ, ਮਨ ਤਨ ਆਗੇ ਰਾਖੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰੇ। ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਜੋਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਈ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਪੁਰਖਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ, गोइंदवाल साहब की पावन धरती ते चले जाओगे। सतगुरु महाराज 1552 दे अंदर गुरता गद्दी प्राप्त करते हैं ते सत्संगत सारे रिश्तेदार मित्र दोस्त गुरसिख इन्हां नूं गोइंदवाल साहब अंदर वसो करन दा सद्दा दिता जांदा है। ते गुरु रामदास पातशाह जी जिन्हां नूं वड्डे होण करके जेठा जी भी कहा जांदा है, भाई जेठा जी भी आपां कहिंदे आ, इह भी गोइंदवाल साहब की पावन धरती ते आ गए। किरत करते ने, किरत कोई भी माड़ी नहीं, मैं फिर बेनती करा किरत माड़ी नहीं, पर किरत दे अंदर चोरी नहीं होनी चाहिए, ठगी नहीं होनी चाहिए, हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। किरत भावे घुंगनिया वेचन की करते ने, नाल सेवा भी गुरु दर ते करते ने। सतगुरां ने कृपा की 1553 दे अंदर अपनी बच्ची बीबी भानी जी का रिश्ता जिहड़ा है गुरु रामदास पातशाह जी दे नाल कर दिता गया। पर सत्संगत मैं सिंह साहब ज्ञानी जसवंत सिंह जी परवाना दे बचन पढ़ रहा सी, वो कहंदे ने भी जवाई मिट्टी का माधो भी होवे तो मान इन्ना करदा है कि सहुरे घर वालियां नूं फिक्र पै जांदा है भी जवाई आया है, इंदी हर तरह नाल खातर कीती जावे। पर सतगुरु भी जवाई बन के गुरु घर दे अंदर रह रहे ने, सानू उन्हां दा गुरपुरब भावे आगमन होवे भावे गुरियाई पुरब होवे मनांदियां ये चेते रखना चाहिदा है कि रिश्तेदारी जे जुआई वाला रिश्ता प्राप्त करके भी निभाउणा है ते जाच निमरता दी मिठत नीवी नानका वारी गुरु रामदास पातशाह जी पासो सिखनी चाहिदी। सतगुरु ते कृपा होगी पर सेवा जिहड़ी है वह चल रही है। अखीर समा आया, मैं बेनती कर देवा सतगुरु महाराज ने कृपा कर दिती हुण आप जी पावन बाणी नूं कदी पढ़ो। सद बाणी दा पाठ रामकली राग दे अंदर बहुत कीता जांदा है, खास तौर ते जदों अंतम संस्कार हुंदा है या आपां अंतम अरदास करदे आ, खंड पाठ दा भोग पैंदा है। मर्यादा दे विच नहीं लिखिया आया, मैनूं माफ कर दिओ, मर्यादा विच नहीं पर परंपरा है। मेरा यह विशा नहीं कि पढ़ना चाहिदा है जां नहीं पढ़ना चाहिदा, परंपरा मुताबक सद बाणी दा पाठ कीता जांदा है ते आपां बड़े प्यार नाल पाठी सिंघा पासो यह पाठ सरवण करदे हां। इस दी पंजवीं पौड़ी मैं आरंभ करांगा। अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो, केसो गोपाल पंडित सद्यो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो, हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बेबान हर रंग गुर भावे, पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल हर सर पावे। फिर महाराज ने आखिया हर गुरु महाराज की कृपा हुई गुरु अमरदास पातशाह दे उते ते आपां बचन पढ़दे हां, रामदास सोढी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो, सतगुर पुरख जे बोलिया गुर सिखां मन लई रजाए जियो, मोहरी पुत सनमुख होवा रामदास पैरी पाए जियो, सब पवै पैरी सतगुरु केरी जिथे गुरु आप रखिया, कोई कर बखीली निवे नाही फिर सतगुर आन निवाया, हर गुरे पाना दी वड़ियाई हर मिलिया, हर गुरे पाना दी वड़ियाई महाराज आखदे ने वाहिगुरु परमात्मा की कृपा द्वारा सतगुरु बोले ते रामदास जिहड़े सोढ़ी खानदान दे नाल संबंधित ने उन्हां नूं इह दात प्राप्त होई सच्चे शब्द की सच्ची राहदारी उन्हां नूं प्राप्त होई जो सतगुरु बोले सारे गुरसिखा ने सतगुरु के पिछे उसका मान किया पहला सतगुरा आप मत्था टेकिया ते फिर पुत्र मोरी जिहड़ा सी उह सन्मुख होया ते फिर हौली हौली सारिया ने मत्था टेकिया जेडे आकी भी सन उन्हां नूं भी गुरु अमरदास पातशाह जी ने इशारा करके समझाया पर गुरु रामदास पातशाह जी जदों इस पदवी नूं प्राप्त करदे ने ते साध संगत निंदक दुष्ट सारे जिहड़े सन उन्हां नूं भी तार दिता ते गुरु घर दे नाल उन्हां नूं जोड़ दिता। मैं फिर बेनती करा मोरी पुत सनमुख होया रामदास पैरी पाए जियो सब पवे पैरी सतगुरु केरी जिथे गुरु आप रखिया। हुण आप जी पढ़ो पट्टा नूं महाराज आखदे ने आप जी बहुत वारी ए बचन पढ़दे हो ना राज जोग तखत दियन गुरु रामदास प्रथमे नानक चंद जगत पयो आनंद तारन मनुख्य जन कियो परगास गुरु अंगद दियो निधान अकथ कथा ज्ञान अकथ कथा ज्ञान। महाराज आखदे ने गुरु अंगद दियो निधान अकथ कथा ज्ञान केड़ा गुरु अंगद देव जी नूं खजाना मिलिया गुरु नानक पातशाह जी दी कृपा दे नाल ओ जेड़ा अकथ कथा दा सत्संगत ज्ञान है सोझी है पंचपूत बस किने जमत ना तरास काम क्रोध अहंकार सारे वस विच हो गए हुण तरास नहीं इन्हां दा डर नहीं जमत तो भाव बिलकुल ही जमत दा भाव इत्थे जम नहीं जमत दा भाव है जन्म तो ही बिलकुल इन्हां दा डर जिहड़ा है ओ मुक गया। गुर अमर गुरु सिर सत कलयुग राखी पत अगन देखत गत चरण कमल जास। फिर गुरु अमरदास ते कृपा होई गुरु अंगद देव जी महाराज दी ते गुरु अमरदास पातशाह जी ने जो कृपा की आपा ए भी कर पढ़दे हां कोई सिफारिश नहीं इथे कोई सिफारिश नहीं। मैं फिर बेनती करांगा इतिहासकारां ने बड़ा कुछ लिख दिता कईयां ने कह दिता बीबी भानी जी दी सेवा नूं फल लगा नहीं बीबी भानी जी भाड़े दी मूर्त हन उह अपनी सेवा करदे ने पर प्रतख गुरु अमरदास पातशाह जी ने आप उस वेले कृपा कीती जदों भट कहिंदे ने सब विद मान्यो मन तब ही भयो प्रसन्न राज जोग तखत दियन गुरु रामदास। कोई सिफारिश नहीं मन गुरु दा मन्या जिवें गुरु नानक पातशाह जी दा मन मन्या ते सत संगत कृपा गुरु अंगद देव जी महाराज दे उत्ते हो गई गुरु महाराज दा मन मन्या ते फिर गुरु अमरदास पातशाह जी ते कृपा हो गई इसे तरह मन मन्या ते गुरु रामदास पातशाह उत्ते कृपा हो गई सबद मान्यो मन तब ही पयो प्रसन्न राज जोग तखत दियन गुरु रामदार क्योंकि गुरु नानक निकट बसे बनवारी तिन लैना थाप जो जगतारी लैने पंथ धर्म का किया अमरदास भले को दिया तिन श्री रामदास सोडी थिर तप्यो हर का नाम अखै निधन प्यो। मैं फिर बेनती करा गुरु नानक ने कृपा प्राप्त की गुरु अंगद देव जी उत्ते कृपा हुई मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया थापिया लहना जीव दे गुरियाई सिर शतर फिराया कि आप पढ़ते हैं ना ज्योति जोत मिलायक है गुरु नानक रूप बटाया गुरु नानक पातशाह जी ने रूप बदले ने पहला नानक दूजा नानक तीजा नानक नहीं नानक दा पहला स्वरूप नानक दा दूजा स्वरूप नानक दा तीजा स्वरूप क्योंकि जोत ओहा जुगत साई सहकाया फेर पलटी है जुगत ओहो रही जोत भी ओहो रही केवल शरीर जिहड़ा है ओ सा संगत दसवें जामे तक बदलदे रह ते अखीर उथे आके गल टिक गई जिहड़ी पहले जामे दे अंदर कही ना शब्द गुरु सुरत तुम चेला ते फिर आख दिता आ गया पई अकाल की तभी चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। बेनती गुरपुर मनान दा लाभ की है, मुबारक है कीर्तन दरबार होन, मुबारक है लंगर जिरे हन ओ बनाए जान, पर वास्तव विच ये चेता रखना है बाबारियां कहानियां पुत सपुत करेन। आप गुरु रामदास पातशाह जी दा गुरियाई पुरम मनांदिया ये चेते रखना, भावे सा संगत थड़ा बनान दी गल आई, भाई रामा जी भी आग्याकार ने, तीन वारी उन्होंने बचन मनिया, चौथी वार कह दिता सतगुरु जी आप जी भुलदे हो, तुहाडी उम्र वडेरी हो गई है, मैं तो थड़ा तिवे बनाना जिवें आप जी दस के जांदे हो। ते गुरु रामदास पातशाह जी आखदे ने सतगुरु जी मैं भुलण हार हा, तुसी दसदे हो मैं बार बार भुल जाना, बस आ गल चेते रखनी है। सात संगत एक कह रहा है तुसी भुलदे हो, गुरु नूं कह रहा है, ते एक कह रहा है कि सतगुरु मैं भुलण हार हा, मैं भुल करदा हा बार बार करदा, मेरे उत्ते किरपा करो, थड़ा जिवें दा तुहानू चाहीदा उवें बनवा लो। ते सतगुरु महाराज उत्ते किरपा होई, ते सा संगत थड़ा केवल बारी नहीं सी सतगुरां दे बैठन वास्ते, थड़ा अंदर दा सी जिथे सतगुरां ने अपना आप टिकाना सी। जिवें आपां बचन पढ़दे हां जिस घर विरती सोई जाने गुरु नानक पूछ करो निस्तारा, आद जुगाद बखीली किने ना पायो हर सेवक पाए निस्तारा, क्योंकि दात जोत खसमे वड्याई। ये जिहड़ी जोत दी दात है ये मालक दे हाथ विच है, मालक ने किथे टिकानी है, गुरु रामदास पातशाह उत्ते किरपा होई, एक ता बार बार गुरु दे चरणा विच आपा अरदास करिए, भुलन अंदर सब को आ भुल गुरु करतार। गुरु नहीं जे भुलदा, गुरु रामदास पातशाह जी दा आगमन पुरब मनांदिया यह गल अंदर धारण कर लईए कि सतगुरु असी भुलदे हा, साडे कोलों गलतियां आउंदियां ने, ते सात संगत यह भी कहा जांदा है भी गलती करके बंदा अपनी गलती नूं मन लवे ते फिर उन्हूं भुला नहीं कहा जांदा, जिहड़ा सवेर दा भुलिया शाम नूं घर विच आ जावे, पर गलतियां भी करनियां ते मनना भी ना, यह जिहड़ा है गुरु घर दा सिद्धांत नहीं। सतगुरु कृपा करे, गलती तां हर बंदे कोलों हुंदी है जीवन दे अंदर, यह फैसला सतगुरां ने बारी विच किया है, भुलन अंदर सब को आ भुल गुरु करतार, भुलन विच किया सब कोई करता आप ना भुलै। हर बंदा गलती कर सकता है पर गलती नूं स्वीकार कर लवे ते गुरु की कृपा जरूर जीवन दे अंदर वापर दिए। अज सतगुरां दा गुरियाई पुरब मनांदिया आपां इह गल चेते विच रखनी। हुण भाई लालो जी दा जीवन आपां पढ़िए ते सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने किन्ना मान दिता है। सात संगत गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर नाम जिहड़े ने ना सारे प्रेमियां दे नहीं आए, प्रेमी तां बड़े सी, तारे गिने जात है ना तारे गिने जात हैं, आकाश दे तारे तां कोई गिन लवेगा पर बाबा नानक ने जिन्हां नूं तारिया है उन्हां दी गिनती नहीं कीती जा सकदी, किन्नियां उत्ते किरपा होई। पर गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर सारियां दे नाम आ गए नहीं। वेखो आपां माता खीवी जी दा नाम पढ़दे हां, माता खीवी जी दा आपां नाम पढ़दे हां ते माता जी किन्ने सत्कारयोग होणगे। भाई मरदाना जी दा नाम पढ़दे हां, भाई मरदाना जी किन्ने सत्कारयोग होणगे। सतगुरु महाराज भाई लालो जी दा नाम लिया तो बगैर भी शब्द उचारण कर सकदे सी, बड़े उचारण कीते ने, पर जदों आखिया ना जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसरा करी ज्ञान वे लालो, वे लालो बड़ा प्यार दा शब्द है। हुण किन्ना प्यार सी सतगुरु महाराज दा, ਮਾਲ ਪੂੜਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵਰਗੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਧਰੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜੀ ਕੀਤੀ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਭਗਤ ਸੰਤ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਰੀ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਭੇਵ ਭਾਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਾਲੇ ਕਦੋਂ ਬੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਵਰਨ ਵੰਡ ਦਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਪੂੜਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਧੜੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਨਿਕਾਰਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਧੜੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਪੂੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਸੰਗਤ ਮਾਲ ਪੂੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਰਤ ਲੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਮਾ ਹੋਏ ਪੁਲੀਤ, ਧਿਆਨ ਦੇਵਿਓ, ਜੇ ਰਤ ਲੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਮਾ ਹੋਏ ਪੁਲੀਤ, ਜੋ ਰਤ ਪੀਵੇ ਮਾਨਸਾ ਤਿੰਨ ਕਿਉਂ ਨਿਰਮਲ ਚੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਖੂਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਪਵਿੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਮਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ, ਉਸ ਸੂਵਰ ਉਸ ਗਾਏ ਗੁਰਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਮਾਨਸਾਂ ਦਾ ਖੂਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਤਸੰਗਤ ਦੱਸਿਆ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਤੇਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕੱਲੂ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਈਮਨਾਬਾਦ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੁੱਢ ਬੱਜਾ ਛੋਟੇ ਕੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ। ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਿਆਈ ਪੁਰਬ ਦੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਖੰਡ ਪਾਠ ਰਕਾਈਏ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ, ਲੈਕਚਰ ਕਰੀਏ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਵਰਤਾਈਏ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਨ ਸਭ ਆਵੇ, ਸਭ ਗਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਉੱਤਮ ਬਾਣੀ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿੰਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਵੇ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਤ ਆਵੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਏ ਸਮਾਨਾ ਇਹ ਬਾਰੀ ਜੋ ਜੀਓ ਜਾਣੇ ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਰਵੇ ਹਰ ਨਾਭਾ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲ।

0: बहुत संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी। आठ ही पहर चौठ साठ घड़ी में एक घड़ी जो सास समागम करे निज कर जात है। रखो सानू भी वाहिगुरु जी अपनी उस संगत दे अंदर जेड़ी तुहानू प्यारी लगदी, एक कृपा साडे उत्ते करो।
1: हर गुण कह ना सको बनवारी,
0: वाहिगुरु दे गुणा दा अंत नहीं पाना, ये बाणी ने सानू समझाया। क्योंकि जेवड़े आप जाने आप आप, नानक नदरी करमी दात, अंत नहीं पाना। पर गुण गाने जरूर ने, तेरे गुण गावा दे बुझाई, जैसे सच में रहूं रजाई। क्योंकि जेबा एक कमन गुण कही है, बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न किन्ही लई है। तेरे गुण बहुते हन बनवारी, ये वाहिगुरु परमात्मा दा सिफाती नाम है। वैसे कृष्ण नाल भी वरत्या जांदा है, पर बाणी विच वाहिगुरु परमात्मा वास्ते वरत्या गया है। वाहिगुरु जी मैं तेरे सारे गुण बयान नहीं कर सकदा।
1: हम पापी पाथर नीर डुबत, कर कृपा पाखण हम तारी।
0: असी पापी हां, मन लोगे पापी बंदा कदी भी ये गल मनन दे लई तैयार नहीं। हां गनका ने मन लिया, अजामल ने मन लिया, ते सत्संग तर गए। अज बंदा पाप भी कीती जा रहा है, ते जिहड़ी चर्चा है ना जालपा ते वितंडा, इहदी वरतों भी कर रहा है। अपनी गल नूं वड्डी करके दस रहा है, ते दूजे की सच्ची गल नूं भी झूठी दस रहा है। ये मीडिया का युग है, जालपा ते वितंडा ये चर्चा असी नहीं करनी, वाद ते हेत करनी। पर महाराज कहिंदे ने अज इस पासे जोर लगा होया है, असी मनन दे लई तैयार नहीं। महाराज आखदे हन असी पापी आ, वाहिगुरु परमात्मा जी ते साडी हालत पत्थरां वर्गी डुबदे पए आ। असी पत्थर हां, पत्थर दिल हो गए हां, क्योंकि तेरे नाम तो टुट गए हां। मोम दिल तां आउंदे ना जे असी तेरा नाम जप दे, फिर साडे अंदर तेरे नाम की कृपा वरतनी सी, पर असी तो पत्थर आ। पर तेरी कृपा हो जावे, जेता समुद सागर नीर भरिया, तेते औगण हमारे, दया करो किशमेर उपावो डुबदे पत्थर तारे। भाई दया सिंह नाल जा रहे ने गुरु महाराज दे, सरसा विच पत्थर सुट दिता, पुछया भाई ये पत्थर क्यों डुब गया। एक ने दसिया पत्थर का सुभा डुबना, दूजा कहन लगे पानी का सुभा पत्थर नु डुबना। भाई दया सिंह नु पुछया तू दस, कहन लगा महाराज मैं ते को गल समझ विच आई है, जेड़ा तुहाडे हत्थां दे विचों डिग पिया वह अज भी डुबा ते कल भी डुबा, जेड़ा गुरु दे हत्थां विचों गुरु दी गोद विचों डिग पवेगा गुरु दी मत तो पासे हो जाएगा डुबेगा, तर नहीं सकेगा। जेड़ा अरदास करेगा पापी हा पाप हो गए ने, पत्थर चित हा साडे कुल तेरा नाम जपया नहीं जांदा, पर कृपा कर तू सब कुछ करन जोग है। क्योंकि आपां पढ़दे हां महाराज आखदे ने वाहिगुरु जी तेरे कोल ताकत है कि सब किश तुमरे हाथ प्रभ आप करे कराए, सास सास सिमरत रहा नानक दान पाए
1: रहा।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नू कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130-4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होण वाले प्रोग्रामां ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उहनां विद्वानां दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
1: देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई बच्चा उत्पन्न करना चाहिए जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के दसवें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी एक बेटा उत्पन्न हो गया। 102 पृष्ठ पर गणा नहीं पड़ा, हम इतना बताते हैं। शिव ने कहा वत्स, जो बच्चा उत्पन्न हुआ उसको कहा बेटा। काल ने कहा काल ने, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ, यानी सिद्ध हो गया कि विष्णु जी का पिता शिव युक्त सदाशिव काल रूपी ब्रह्म। जैसा यहां देखिएगा ये 101 पृष्ठ पर है कि उस काल रूपी ब्रह्म ने, वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं उन काल रूपी ब्रह्म ने, ये काल रूपी ब्रह्म है विष्णु जी का पिता और यह प्रकृति दुर्गा है इनकी माँ। ठीक हुआ, अब शिव ने उसका नाम धर दिया विष्णु। ये तो हो गया विष्णु उत्पन्न हुआ दुर्गा और काल से। अब यहाँ ये छठा अध्याय समाप्त हुआ। सातवें में ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर साम सदाशिव ने पूर्वोत्पन्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया, यानी जिस तरह विष्णु की उत्पत्ति हुई फिर मेरी उत्पत्ति दुर्गा से हुई और काल के संयोग से। उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि में डाल दिया और लीला पूर्वक वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा क्या कार्य है, बता। मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूं और किसने यस इस समय मेरा निर्माण किया है। अपना आत्मा अब देखिएगा अध्याय नंबर 9 में और प्रश्न नंबर 110 पे संक्षिप्त शिवपुराण रुद्र संहिता और ये लास्ट में है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीन देवताओं में गुण है परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। अब यहां चार हो गए, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र तीन, और इनसे न्यारा जो है वो शिव, ये गुणातीत माने गए। इन तीनों मत गुण है रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव शंकर, और ये काल भी शिव रूप विष्णु रूप ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है। तो शिव पुराण में जिसने शिव रूप में दर्शन करे उस व्यक्ति ने शिव पुराण की रचना की, तो इसको हीरो बना लिया शिव को, सदा शिव काल को। अब यहां ये अनुवाद करता पीछे तो असमंजस में पड़ गया कि विष्णु शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, लेकिन यह नहीं छुप पाई इनसे, इन तीनों से अलग है। फिर यह एक समस्या उत्पन्न हुई, कहने लगे तो रुद्र के बारे में कहा है, शंकर के बारे में नहीं। ये समस्या हल होगी अभी दिखाते हैं 24-25-26 पे। एक बार ब्रह्मा और विष्णु की आपस में लड़ाई होगी, वो कह मैं तेरा बाप, वो कह मैं तेरा बाप, दोनों लड़ पड़े। ये देखिएगा विद्वेश्वर संहिता संक्षिप्त शिवपुराण ये 24 पृष्ठ पे। जब ये दोनों का झगड़ा हो गया विष्णु और ब्रह्मा जी का, तो बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया काल में, तेजों में स्तंभ पिलर, तो ये दोनों की लड़ाई बंद होगी। फिर वो स्वयं आकर प्रकट हो गया ये 25 पृष्ठ पे। यहां से देखेंगे हम, ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, जब ये काल आकर खड़ा हो गया तो दोनों ने आपस में चर्चा की इस काल के साथ। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभो सृष्टि आदि पांच कर्तव्यों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। तो भगवान शिव बोले, यू काल बोला, आगे ज्यादा ना बताऊं, यहां लेते हैं, अब 26 पृष्ठ पर आ जाते हैं। ये काल बोलता है, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सखीथी नामक दो कृत प्राप्त किए हैं। विष्णु और ब्रह्मा तो यहां तक हो गए, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप, मेरे जैसे ही आकार के, मेरे जैसे ही वेशभूषा वाले रुद्र और महेश्वर ने दो अन्य उत्तम कृत्य संहार और त्रोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कृत्यों कर्म को भूले नहीं, इसलिए मैंने इनके लिए उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। अब ये दो तो ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, और दो ये हो गए रुद्र और महेश, चार हो गए, और पांचवा ये बोल रहा है यो काल है। हमने यही सिद्ध करना था। यहां देखिए, मैंने इनके बारे में बता रहा है कि रुद्र और महेश तो मेरे जैसे ही हैं, इन मेरे जैसे ही ये वाहन रखते हैं, मेरे जैसे ही इनके पास हथियार हैं, वे रूप वेश वेशभूषा कृत्य वाहन और आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। अब ये क्या बताता है, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है, वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध करने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर श्रवण करने से मेरा ही सदा श्रवण होता है ब्रह्म का। मेरी उत्तरवर्ती मुख से अकार, पश्चिमी मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार का और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। ये पांच अकार मकार और अकार का और इस उकार मकार बिंदु और ये नाद, इन पांचों से मिलकर ये एक ओम मंत्र हुआ। इस प्रकार पांच अवयवों से वो युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अयों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नाम एक अक्षर हो गया। अपने आत्माओं, इससे फिर गीता जी का लिंक जुड़ेगा। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है, गीता ज्ञान दाता ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके काल बोल रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। तो यहां भी ये कह रहा है कि ओम मेरा एक अक्षर ओम है। और इसने देख नीचे नाड़ी ने क्या लिख दिया, वह आकार रहित अकार आदि मकर कर्म से और मकार आदि कर्म से कर्म से प्रकाश माया। ओम नमः शिवाय शिवाय यह पंच अक्षर मंत्र है। ओम नमः शिवाय में ये अकार मकार नो के पांच से, और जबकि स्पष्ट कर रहा है कि इस प्रणव मंत्र में, इस ओंकार में ही पांच हैं। ये उत्तरवर्ती मुख से अकार, दक्षिण मुख से, पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण से मकार और पूर्ववर्ती से बिंदु, मध्यवर्ती से नाद, ये पांच अयों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अयों से एकीभूत होकर यह प्रणव मंत्र ओम नामक एक अक्षर हो गया। और ये ओम नमः शिवाय इसने लिखा भी अलग भाषा में है, ये राइटिंग में, ये मूल संस्कृत में नहीं है, ये मन गढ़ंत है। लोक वेद अनुवादकर्ता ने हिंदी वाली में फंसा दिया, लेकिन संस्कृत मूल भाषा में ऐसा नहीं है ये। तो अब हमने ये मंत्र मान लिया, ओम भी छोड़ दिया, ओम नमः शिवाय, तो ओम भी माया आ गया। इसके सोच लिया हमने ओम नमः शिवाय, इसकी लाजी रटना। अब इससे ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पूज्य पिताजी ये काल रूपी ब्रह्म है, जिसको सदा शिव भी कहते हैं। ये अपने आत्माओं प्रसंग चल रहा है, अग गए ना बावड़े रहते भी सब जा, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना ना। अब तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता है और काल इनका पिता है। और इस काल का विधान है कि यहां कोई भी जीव स्थाई नहीं है। अब क्या बताया है कि बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी लेकिन उसका लंबा चौड़ी बहुत बड़ी आयु है। कैसे है? एक चतुर्युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में 43,20,000 वर्ष होते हैं हमारे मनुष्यों के। और ऐसे ऐसे चतुर्युग के 1,000 चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन, 1,000 चतुर्युग की रात हम सीधा लेते, वैसे तो 1,008 होते हैं। इस प्रकार 30 दिन रात का बना हुआ एक महीना हो गया ब्रह्मा जी का, 12 महीनों का एक वर्ष हो गया। इस प्रकार 100 वर्ष बने, जो इतनी आयु होगी ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की ब्रह्मा जी से 7 गुना, और विष्णु जी से 7 गुना अधिक आयु है शंकर भगवान की। ये तीनों मरेंगे। उसके बाद 70,000 बार जब ये शिव मर लेंगे, शंकर मर लेंगे, तमोगुण शंकर मर लेगा, काल का पुत्र, इसकी 70,000 बार ऐसे इनकी मृत्यु हो लेगी। इतने ये 84,00,000 योनियों में जा चुके होंगे और नए पुण्य आत्माओं को काल अब पत्नी दुर्गा से उत्पन्न करके ऐसे इन पोस्टों पर विराजमान करता रहता है। तो तब एक काल की मृत्यु होगी। गीताजी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये काल भगवान कहता है, ब्रह्म कहता है, गीता बोलता हुआ श्री कृष्ण में प्रवेश करके, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। मेरा जन्म और मृत्यु जो होता है वो अलौकिक है। कैसे? ये काल जब मरता है 70,000 बार त्रिलोकीय शिव यानी तमोगुण शिव मर लेंगे तब, तो यू एक युग होता है उस अक्षर पुरुष का, परब्रह्म का, जो 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी। ऐसे ही फिर 1,000 युग का दिन, 1,000 युग की रात, 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष, ऐसे 100 वर्ष की आयु अक्षर पुरुष की, परब्रह्म की, 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है। ये ब्रह्म जो है काल, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। इसको सर्व पुरुष कहते हैं और इस परब्रह्म को अक्षर पुरुष कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में इन तीनों का विशेष वर्णन है, परम अक्षर ब्रह्म का और इस सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष का। तो ये भी मरेगा। अब ये काल कहता है कि मेरा जन्म और कर्म अलौकिक है। कैसे हैं? कि ये यहां मर जाता है जब 70,000 बार ये त्रिलोकीय शिव जो वर्तमान बैठे हैं, यो ब्रह्मा मरेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पूरे हो लिए, 50 और रहते हैं तो वो भी पूरे होंगे, यूं मरेगा। उसके बाद ऐसे 7 और ब्रह्मा बैठा दिए जाएंगे, फिर विष्णु मरेगा, फिर 7 विष्णु ऐसे मर लेंगे, साथ में ब्रह्मा भी मरते रहेंगे, फिर एक शिव मरेगा, ये शंकर मरेगा, काल का पुत्र। और जब 70,000 बार ये प्रक्रिया हो लेगी तब एक काल मरेगा ब्रह्मलोक में, उसके बाद एक ब्रह्मांड का विनाश होगा और ये सभी प्राणी ऑटोमेटिकली परमात्मा परमेश्वर की कृपा से दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे। ये दुर्गा भी मरेगी, काल भी मरेगा और वहां चले जाएंगे। वहां जाकर ब्रह्म और दुर्गा का युवा शरीर ऑटोमेटिकली बन जाएगा उस कबीर परमेश्वर के द्वारा बनाए गए, दिए गए वरदान के आधार। तो ये कहता है कि मेरे जन्म और कर्म आप जैसे नहीं है, मृत्यु तो होती है लेकिन मेरी कुछ और प्रोसीजर है जो तुम नहीं जान सकते। तो कबीर परमात्मा ने आके बताया ये तरीका। जैसे यहाँ कई बहनों के अंदर, भक्तों के अंदर कोई तो कहेगा मैं भैरव हूं, भैरव, और कोई भूत नहीं होगा मैं दुर्गा हूं, काली हूं, अनुजीव कड है, इसका दो धरे धड़ा फिर सिद्धि हो जाए, दुर्गा भी बाज जा और भैरव भी जाता रहे। जैसे कोई सरपंच ना रहे और बाद में भी उसने सरपंच साहब कह आग्रह जी रहा रहेगा, और वो अपने आप ने भी कोई नहीं पूछ रहा कौन सा था सरपंच था, जबकि वो सरपंच है नहीं, फिर भी क्योंकि और उसे सरपंच कहने लग गए, वो एक नाम सा पक गया। तो ऐसे ही ये मृत्यु के उपरांत जो ब्रह्मा विष्णु और शिव जो मर जाते हैं, उसके बाद फिर ये किसी में प्रवेश करके, क्योंकि पितर रूप धारण कर लेते हैं, इनमें फिर भी कुछ पुण्य शेष रह जाते हैं, और फिर उसी में एक दूसरा भूत और आ जाता है। वो कहता अहम शिवहम शिवहम शिवहम, मैं शिव हूं मैं शिव हूं। वो कहता शिव की पद पर रहा होगा पहला, वो मर गए भूत बन गया। तो पुण्यात्माओं, उन भूतों ने यह पूरा बखेड़ा कर रखा है, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना न। जैसे कोई सत भक्ति भी मान ले, या ब्रह्म तकी करते हैं, कोई विष्णु जी की पूजा करते हैं, मान लीजिए बड़ी बात, तो विष्णु लोक में गए, वहां एक अलग से एक रेस्टोरेंट है, वहां अलग से स्वर्ग बना हुआ प्रत्येक लोक में, जैसे शिव के लोक में, विष्णु जी के लोक में, ब्रह्मा जी के लोक में, दुर्गा जी के लोक में, है एक कॉमन स्वर्ग है, फिर इंद्र के लोक में, फिर ब्रह्म लोक में भी। तो जो भी जहां की साधना करता है, अपने पुण्यों को वहां समाप्त करके वो तुरंत ही वापस आ जाता है, फिर नरक जाता है, 84 लाख योनियों में धक्के खाता है, भटकता है। जैसे ब्रह्म लोक में चला गया तो वहां हजारों युगों तक अपने पुण्य आधार पर, जितना जिसकी पुण्य है, भक्ति है, उसका आधार से ब्रह्म लोक में रहेगा, वहां समाप्त करके अपने पुण्यों को फिर नरक जाएगा, नरक के बाद फिर यही फिर धक्के खाओगा। अब जैसे कोई पुण्य आत्मा है आज, और अच्छी पोस्ट है या बढ़िया व्यवसाय है, और वो नो सोच रहा है मैं यही डटा रहूंगा, मेरी मृत्यु ना हो, क्योंकि उसको याद भी कोई ना यह बात, और मृत्यु एक सेकंड में हो जाती है, वो सारी उम्र में जो इकट्ठा किया था वो यही रह गया। परमात्मा ने बताया है, परमेश्वर ने उदाहरण दिए है कि जो सत्संग में नहीं आते और परमात्मा से परिचित नहीं होते, वह गोबर के भूंड है। गोबर का भूंड आपने देखा होगा, खेतों में पशु गोबर कर देते हैं, और भूंड होते हैं काले काले, उड़ते भी हैं, थोड़ी पंक्षी भी व्याकरण के, और वो क्या करते हैं, उस गोबर के गरोड़े बना लेते हैं गोड़ी सी, और उसने स्टॉक करते हैं बिल में ले जाकर गोबर ने, है, और सारे रात और सारी दिन इतने वो गोबर खत्म ना हो ले, वो लागे रहा कर ढोहे जाएंगे, इतने बेईमान हो जाते हैं कहीं वो गोबर फिर मिल रहा है कोई ना। और वो गोबर ढोते ढोते गोली बनाते लाके लाते लाते को पशु के पैर के नीचे आकर वो दोनों मर जाते हैं, और वो गोबर उड़ा इकट्ठा करा रह जाता बिल में। तो जो प्राणी परमात्मा से परिचित नहीं है और इस माया रूपी गोबर ने जोड़न में दिन रात लागे रहते हैं, और वो जोड़ा जाड़ा गोबर का तो बैंक में रह जाएगा, है, या किसी तरह दे रखा गा वो बढ़कर देना। परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़ुआ लागे, राम नाम कड़ुआ लागे, ये मीठे लागे दामे, द्विधा में दोनों गए, भाई माया ने लीना राम। एक बार ये दास पंजाब में तलवंडी भाई, एक छोटा सा कस्बा है बरवाले जैसा, वहां मेरे पूज्य गुरुदेव जी का आश्रम, ज्यादातर वो वहीं रहते थे, वहां कुछ श्रद्धालु अच्छे थे, वैसे तो उनके कई आश्रम थे, मोगा में थे, नजफगढ़ में था, एक खन्ना के अंदर भी था, और तलवंडी भाई, तो ज्यादा तलवंडी भाई रहते थे। उनके सतलोक गमन के बाद इस दास जी को आदेश दे गए थे वह नाम दीक्षा देने का, इस दास के अतिरिक्त उन्होंने किसी को आदेश नहीं दिया था। तो वहां सत्संग करने जाता था ये दास तलवंडी भाई में, वहां पर दूसरे रविवार को हम सत्संग करने जाते थे। तो वहां कोई बुढ़िया मर्गी थी गुरुदेव के भक्तों परिवारों में, उनके कोई रिश्तेदार आए हुए थे उनका शोक व्यक्त करने के लिए, तो उन्होंने, वो शुक्र को आए थे, शनिवार को जाने लगे, तो गुरुदेव के सेवकों ने कहा कि आप रुको, कल संडे है, सत्संग सुनना, और आपने सत्संग बहुत सुने होंगे लेकिन ये सत्संग भी सुनकर जाइयो आज। उसे परिवार था, कहने लगा मुझे इतना टाइम नहीं है, कल को एक पार्टी आवेगी और उससे मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट होना है, अनुबंध होगा, एग्रीमेंट, और उसमें मुझे 5 लाख का बेनिफिट होगा। उन्होंने बहुत समझाया, कोई बात ना, कल किस टाइम आओगे, वह 1:30 बजे ही, 1 बजे तो चले जाइयो। नौ से ग्यारह सत्संग होगा, यहाँ से बारह साढ़े ग्यारह खाना खुना खा के चलोगे तो पहुंच जाओगे 2 बजे तक। की बात है या चंडीगढ़ रही 3 घंटे का रास्ता। ना मान्या, बोला तुम्हें क्या पता, तुम्हें पता नहीं मेरे बिजनेस का। वो चले गए दोनों, चले गए थे अम्बाला के पास, एक बजरी का भरा हुआ ट्रक खड़ा था और किसी कारण से उसके पिछले पहिए कंडम हो गए थे, वो निकाल रखे थे, जैक ला रखे थे। मारुति कार के अंदर पूरा परिवार था, दो वे थे, दो एक लड़का लड़की थी, और पूरी स्पीड थे कि उसने तो 5 लाख दिखे थे, गाड़ी किते किते पंजे टेके थी, और उस स्पीड में वो ट्रक के नीचे जा टकराई। इतनी स्पीड तक लगी कि वो जैक भी हट गया, डिग गया, और पूरा लोडी ट्रक, पहले तो ट्रक टकरा में मर लिए होंगे, राखी कसर काट दीवा बजरी का लोडी ट्रक, नौका नौ पड़ गया, चारों मर गए। अब चाट ले उस 5 लाख के बेनिफिट ने सिर पैदर गए। तो पुण्यात्माओं, उनकी दोष नहीं, ये जब तक मालिक परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता, सबकी नएगी बांध रखी काल ने, फिरकी बना रखी है, दिन रात भाजले भाजले, सपने में भी वह सोचे तो ये गोबर के भूंड बताए परमात्मा ने। और जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, और जिनको वो चतुर लोग जो माया के पुजारी ने सोचे हैं कि तीसरे दिन सत्संग में जावे हैं, ये तो अपना नाश करेंगे, हैं के दरिया सत्संग में जानते हैं, अपना धंधा क्यों ना करते, और आप जी को वो अनजान लोग मूर्ख समझते हैं, और आम उन मूर्ख समझे, क्योंकि हमें ज्ञान हो गया, हमारी आंख बन गई, हमारी ऑपरेशन हो गया मोतियाबिंद का।
2: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
3: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू, साउथ वेस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा, यूनिट नंबर 1130, 4818 वेस्ट विंड ड्राइव, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।
4: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरण बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700, 403 4397700।
3: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने, ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
1: अकल अलवणे दीखते ये सर्व अकल के मूले, सदा रटे हरि नाम को ये झूले अनहद झूले। परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं ये भक्तों को ये अकल अलूने कहे हैं। क्यों? ना तो टिक्की बिंदी लाओ लाली है हमारी बहन बेटिया, ना नाखून पालिस लाना, क्योंकि हम ना छेना लागे ये फंड बकवा दे खाम खाएगी। एक बहन कह रही थी नोवली जी, मैं एक ऑफिस में नौकरी करती हूँ, किसी दिन लिपस्टिक वगैरह ना ला कर गई, सारे फंड ना करके गई तो सब चिंतित से होकर बैठ जाते हूँ, कम बोले मेरे थे। मैं पहले दिन ऐसे गई, उन्हें सोची कि इसका कोई मर गया, और मेरे तय धीरे धीरे सहज सहज आगे पूछे क्या बात होगी, और मैं हैरान में भी की बात क्या चक्कर है, ये सारे आज अजीबो गरीब तरीके से मेरे से बात कर रहे हैं। तो एक बहन कहने लगी क्या बात होगी, बोली बात क्यों हो थी, क्या तेने ये लिपस्टिक वगैरह नीला रखी। कहने लगी हमने नाम ले लिया, जहां से मैंने नाम लिया वहां की मर्यादा है, यह नीलाम ले कोई बात भी। फिर मजाक करने लग गए मेरा, तो पुण्यात्माओं तो उन फंड करनिया ने वो हमारी बेटी जो अपना सिंपल वे से रहने लगी वह मूर्ख लगी। अकल अलूने दीखते ये सर्व अकल के मूल है, और सदा रटे हरि नाम को। ये जो अकल अलूने दिखे बिना अकल के दिखा हम भगत कहते, परमात्मा कहते ये तो सारे ज्ञान की जड़ है, इन्होंने तो कति सब कुछ समझ लिया और परमात्मा की भक्ति करे सतलोक में, सुख में सथल में आनंद से झूल झूला करेंगे, वहां कोई कुछ भी तो ना करना। तो इस प्रकार पुण्यात्मा एक गोबर का भूंड था, और वो प्रतिदिन ऐसे उस काम में खूब बिजी था गोबर इकट्ठे करने में। एक भौरा उसमें जाता था बाग में भौरा, और भौरे जैसा ही वो गोबर का भूंड होता है। अब बाग के अंदर वो भौरा था, नाना प्रकार के महक लेता सुगंध लेता, और वो आकर के उस गोबर के भूंड को देखकर दुखी को कहने लगा रे भाई आ मेरे साथ तुझे बाग में घुमा के लाऊं, और वहां से आनंद है वैसा है। वो भूंड ने कहा तो अपना काम करे, तू तो करते फालतू, और मुझे टाइम नहीं है तेरा, जितना ना लफंडर नहीं हो, मुझे बहुत काम है, तू तो अपना काम करे। बौरे ने सोचा यो देख नालायक और किस में बिजी हो रहा, उसने सोची एक दिन फिर बैठेगा, दो तीन दिन पाछे फिर समझान लग गया। तो तीसरी बार जब मीटिंग हुई तब कुछ बात सो आएगी उसने उस गोबर के भूंड ने, और उनके पास बैठने थे क्योंकि फूलों की गंध महक आवे, तो कहने लगा भाई तू आवे है ना, जब वो गोबर का भूंड कहता बौरे को आप यहां आते हो ना मुझे आनंद सा आता है, और जहां आप जाते होगे वो तो बहुत ही अच्छी स्थल होगा। कहने का भाव ये है, एक दिन वो राजी कर लिया उस गोबर का भूंड उस भौरे ने कि तू एक बार बाग में चल मेरे साथ, और तेरा कोई बैलेंस काम रहेगा ना गोबर ढोने का, मैं मदद करवा दूंगा आके तेरी, तू एक बार चल मेरे साथ। वो चला गया। अब उसने तो जाते ही फूल पर बैठा, ऐसा बैठा ऐसा आनंद आया उठा है कोई नहीं। अब भौरे ने देखा भाई वो तो शाम का समय हो गया और फूल हो गया बंद, फूल बंद हो गया। तो भौरे को तो पता था कि सुबह जिंदा मेरा सुबह पाओगा, अब तो यू निकल नहीं सकता। सुबह उसने जाकर क्या देखा कि सुबह कोई फूल तोड़ने वाला आ गया, उसने उन फूलों को चुन लिया। वो पता होता था कि ये थोड़ी धूप करते ही खिल जाएंगे, पता होता उनको, वो ले गया उन फूलों ने, कुछ बंध्या ने कुछ खिले हुए ने, और उसने अपनी पूजा पाठ करके वो गंगा में बहा दिए। वो बौरा आया, बौरे ने देखा भी फूल टूट गया, ये बिरने कीत पड़ा होगा। वो उसने जाके देखा, पहले तो उस धार्मिक अनुष्ठान पर गया जहां वो क्रिया करी थी, उन्हें फिर देखा वो फूल बह रखे थे वहां, उसमें जाकर देखा वो फूल खिल गया और वो बौरा वो भूंड उस समय बैठा। फूल पे, जब वो बौरा बोला रहा आजा डूबेगा तो उठे मेरे साथ आ जा, तब उठ गया। तो कहने का भाव ये है, वो गोंड ने बोला रहा मैंने तो मैं जीवन खो दिया भाई, सारा गोबर इकट्ठा करके और सुख तो मैंने आज आया जिंदगी में, मेरा पता टह नहीं गया इस तरह से। तो पुण्यात्माओं, जो पुण्यात्मा इस संसारिक धंधे फाइनल मान रहा है और जो इस सत्संग के सुख से एक बार परिचित हो जाता है, फिर वो गोंड की तरह अटक को नया से, क्योंकि ये सुख न्यारा है और वहां सुख है ही नहीं, वो तो एक ब्रह्म माटी है, वो हमारा प्रारब्ध कर्म है। लेकिन परमेश्वर ने ये बताया कि उस प्रारब्ध कर्म करते करते इस मालिक के लिए भी थोड़ा समय निकालो। असंग जन्म तन मृत्या हो गए जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे बहुर न दे धरे रे। यहां आने के लिए आप जी ने परमात्मा के इन फार्मूलों को अप्लाई करना पड़ेगा। जीवित मरण का अर्थ होता है, एक तो ये होता है कि मन चाहता है विकार करना, गोटी शूटी लाना है, पता नहीं कि इसके अवाई के लिए होते हैं, बीड़ी शराब मास्टमा को सांग सिनेमा देखना, कितना गप्पे आंकना, ताश खेलना, सिनेमा देखना, इनसे मन हटा लेना भी जीवित मरना है। और दूसरा मरना यह है कि मान लीजिए जैसे एक व्यक्ति जा रहा था नाइट सर्विस में और सुबह उसने वापस आना था, कोई विशेष काम था, और वो नाइट सर्विस वाली बस दुर्घटनाग्रस्त होगी, उसकी मृत्यु होगी उस व्यक्ति की। अब जो व्यक्ति रात ने ट्रेवल कर रहा है तो कितना स्पीड होगा उसके काम की, कितना जल्दी थी उसको वापस आकर मैं ये करूंगा और वो करूंगा, अब उसका काम तमाम हो गया, अब वो जल्दी भी रहेगी और काम भी रह गया, कदे नहीं जा सकता, कभी नहीं कर सकता। तो परमात्मा कहते हैं जब आप यहां आने की सोचो तो उसमें ये मान लीजिए आज मेरी मृत्यु हो जाए और फिर कौन करेगा इस काम ने जिसके ऊपर मैं इसे अनमोल स्थान पर जाने से बाधित हो रहा हूं, वंचित हो रहा हूं। तन्नो सोच ले मैं मर गया और चाल देखी जाएगी, तीन दिन के लिए, चार दिन के लिए, दो दिन के लिए, एक दिन के लिए मर के देख लो। अब ये तीन दिन हम मर का आगे में सोच ले मर गए, जीवित मर गए, और इस तीन दिन में या दो दिन में चार दिन में जितने दिन आप रहोगे, जितना भी कोई काम आपका खराब शराब आप मानते हो हानि होगी तो फिर पूरी कर लेंगे अपना लाग लोग, क्योंकि पहुंच गए हम दोबारा, तीन दिन मरे, पर यदि परमानेंट टिकट कट जाए जब के कर लेंगे तो भी तो काम रह जाएगा। तो इस प्रकार इन फार्मूला ने अप्लाई करके और आंख मीच कर चल पड़े तब यहां आया जागा ना, काल कति नहीं आन दे। कहते हैं मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु काणे, और संत मिलन को जब चले है ये अटकावे आणे, इनका अटकाया अटके नहीं जो संत मिलन को जावे, कह कबीर सो संत है वो आवागमन नसावे। मात पिता सुत बेटे न कहे स्त्री, आलस यानी लेजीनस आलस कर जा, और बंधु कान लोकलाज ये बाधक है, जब संत मिलने को चलता है तो ये अटकाती है, इसको रोकती है, बाधक बनते हैं। कई जवान बच्चे आते हैं, मेरा पिताजी स्वयं दारू पीवे शराब पीता है और मुझे नहीं होगा तू सत्संग जागा तने काट दूंगा तने पीटूंगा, और ऐसा ही करता है और मैं आता हूं मैं रुक नहीं सकता। ऐसे कई बहन है वो कहती मेरा पति दुखी करता है, मार पीट करता है और फिर भी मेरे पर रुका नहीं जाता। ऐसे कई भक्त कहते हैं मेरी पत्नी ने कहा जहर खाकर मर जाएंगी जब तू सत्संग में गया था, अब बता क्या करें। लेकिन फिर भक्त कहता भाई मरे चाहे जी गलत जगह तुम्हें जाता ना, अब तो मेरा समझ में आ गई। तो यहां फिर कहीं बंधु कान यानी लोक लाज, कुल परिवार के लोग कहने लग जाएंगे, पड़ोस में बैठकर चर्चा करेंगे, भाई दोहरा कहेंगे इनका इन अक्ल मारी जारी है, ले है तीसरा दिन झोला ठाव बैग ठाव और चलो सत्संग में जा रही है सत्संग में, कह दे रहा है मैं ये तो हा? एक भगत कह रहा था मैं सत्संग का नहीं चल जाना, और मेरे वो दारू पीने मित्र नो का अच्छा नो से तू ये खाकर चली बिल्ली हज को, तो मैं उनको नो कहूं भाई मैं अब हम तो चल तो पड़े हज को, तुम चले भी नहीं हज को, तुम अब भी बन रहे ये बुरे कर्म करने। उनकी बातों में उनकी मजाकों में उनके द्वारा दिए गए ये टोंट सहन करता हुआ परमात्मा की जो इस वाणी का सख मन रुकन नहीं देती। जिस बुजुर्ग के बेटे सियाने हो जाए बड़े हो जाते हैं माता पिता के, वो लोक लाज के कारण बच्चों ने कहने लग जाते हैं दूसरे लोग के पा गया तेरे। हमारा एक रिश्तेदार था उसने नाम ले लिया, एक पाठ कराया घर घर जाकर पाठ कराया। अब पाठ कराया तो वो बालक सियाने हो रहे थे, उनके पड़ोसिया ने न्यू बका दिया हो उनके बच्चे, कहने लगे भाई तेरा बाबू तो पागल हो गया पिताजी और यू थारा नाश करेगा, देख लाजिए 2000 रुपये अरीब देख लिए तो मेंटल हो लिया। अब वो इसे पीछे पड़े उसका नाम भी छुटवा दिया और करते बाहर लकड़ने पर भी प्रतिबंध ला दिया। वो ढीला आदमी था ज्ञान समझा नहीं था वो टाल कर गए। तो कहते हैं मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान और सतगुरु मिलने जब चला ये अटकाव आण, इनका अटकाया अटके नहीं और सतगुरु यानी संत मिलन को जा कह कबीर सो संत है वो आवा गवन नसाव। तो इस प्रकार जब हम परमात्मा के मार्ग पर प्रस्थान करते हैं तो इस तरह की बाधाएं भी हमारे को आती हैं, लेकिन इनको हमने चीरते हुए आगे चलना पड़ेगा। तो जैसे मीराबाई जी थी उनको बहुत कुछ लोगों ने भला बुरा भी कहा, लेकिन उसके यह बात समझ में आ गई थी, वो यही कहा करती कि भाई इब चाहे मुझे बुढ़ी कहो चाहे गुंडी कहो मेरे तो यह बात समझ में आएगी और मैं इस मार्ग से विचलित नहीं हो सकती। असंग जन्म तन मृत्या हो गए जीवित क्यों नाम रह रे और द्वादस मध महल मठ बोरे फिर बोहर ना देत रह रे। तो इस प्रकार के फार्मूले अप्लाई करके हम यहां आ सकेंगे और अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। परमात्मा कहते हैं जब ये लोक लाज के कर लेगा तू चार पाया का हो, परमात्मा कहते हैं अब तक तू लोक लाज में भाई कुल बंधुओं की बात तन मान के सत्संग नहीं सुनेगा और फिर तू गधा बन जाएगा चार पाया का, फिर ये लोक लाज के करेगी तेरे ऊपर बैठेंगे ये लोग। तो अपना पीछा छुटवाना है तो परमात्मा के द्वारा दिए गए इस ज्ञान को स्वीकार करना होगा। आग गए ना बावड़े रहते भी सब जा बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना ना। अब जैसे आपके पास बहुत अच्छी कोई संपत्ति भी है, माता पिता भी हैं, बच्चे भी हैं और कल मृत्यु होगी, होगी तो कहेंगे ठाओ ठाओ ठाओ जल्दी करो जल्दी करो और 2 घंटे भीतर शमशान घाट पर फूक फाक कर फारिग हो जाएंगे, रोने वाले रोए जाओ। और वो चला गया ऊपर मनमा ने फिक्र अकीद गदे की यो नीम जागा और पाछा उसके और नरे लटोटर शुरू कर देंगे। अब वो मान लीजिए कोई पुण्यात्मा भी था और मृत्यु होगी, वो चला गया स्वर्ग में, जब स्वर्ग में पुण्य समाप्त हो गए तो कहेंगे वहां से भी समाप्त होते कहेंगे चल नरक में, अब नरक का समय समाप्त होगा वहां से कहेंगे चल गधे की योनि में, अब गधे का जीवन पूरा होते हुए चल कुत्ते की योनि में और फिर 84 लाख योनियों में धक्के खाकर फिर मनमाने फिर मनुष्य जीवन आ जाए। ब्रह्म लोक तक भी गए हुए प्राणी वापस आते हैं और इस ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्म लोक फाइनल प्लेस है इनका और ये सबसे अंतिम सुख में स्थल है और वहां जाने के बाद भी फिर भी चलो चलो केवल सतलोक में जाकर के या चलो चलो समाप्त होगी। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जा बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। बिन साहेब यानी परमात्मा सतपुरुष की भक्ति के बिना कहीं ठोर ठिकाना कि तो सथाई सथल नहीं है। पुणात्मा सथाई स्थान को पाने के लिए जो श्रीमद भगवद गीता का ज्ञान दाता ब्रह्म कहता अर्जुन यदि तुम्हें पूर्ण मोक्ष चाहिए उस तत्वदर्शी संतों की खोज कर, फिर वो जो तुम्हें ज्ञान दे उसके आधार से उस परमात्मा की प्राप्ति कर। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति, यानी वहां चलो चलो समाप्त हो जाएगी और सनातन परम धाम शाश्वतम स्थान को प्राप्त होगा, फिर तेरी कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। अपने विषय में चौथे अध्याय के पांचवें और नौवें श्लोक में, दूसरे अध्याय के बारहवें श्लोक में अर्जुन गीता ज्ञानदाता कहता कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू भी मरेगा मैं भी मरता हूं। ये अरहट का कुआ लोई यागल बंध्या है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा हरहट डोर बंधे कई बारा। ये कोटिक करता फिरता देख्या हरहट डोर कहूं सुन लेखा, ये चतुर्भुजी भगवान कहावे हर हट डोर बंधे सब आवे। 600 साल पहले परमात्मा ने कहा था ये तेरे चतुर्भुजी भगवान कहावे ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये भी जन्म मृत्यु के इस चक्कर के अंदर हजारों बार धक्के खा लिए, भटक लिए। अब 600 वर्ष पहले ये बातें इतनी कड़वी लगी अज्ञानी संतों के अज्ञान के कारण, हमने परमात्मा को स्वीकारा नहीं। वही ज्ञान है आप जी को स्वीकार्य हो रहा है क्योंकि आप शिक्षित हो गए, और ये शिक्षा मालिक ने इसलिए दी है कबीर जी ने कि मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे। अब ये पीक टाइम है, ये भक्ति युग है, भक्ति काल शुरू हो गया, भक्ति का समय शुरू हो गया। यह बिचली पीढ़ी है, पहले जब परमात्मा आए थे कलियुग के प्रथम चरण में, मघर से गए थे वह सह शरीर, धर्मदास जी को मिले थे, तब कहा था धर्मदास जी इस ज्ञान ने लिपिबद्ध कर ले, और अभी इस मूल ज्ञान को किसी को समझाना नहीं, अरे यो मेरे वाला ज्ञान किसी के समझ मावे को ना, बिना समझाए बिना मेरे बिना, परमात्मा कहते। और धर्मदास तो लाख दोहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाए, और मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी, और मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब लग द्वादश पंथ मिट जाए। काल ने कहा था परमात्मा से सतयुग में, प्रथम सतयुग में कहा था कि द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, और द्वादश पंथ नाम जो ले ही वो मेरे मुख में आन समय ही, और अनेक पंथ चलाऊं और नाम तुम्हारा ले आवाज लगाऊं। अपने आत्मा यहां बात आकर जाती है कि भाई ये दास ये जो बात कह रहा तो है तो सच्ची कति सत्य है, लेकिन यह सच जचे को नहीं, इसको जचाने के लिए थोड़ा सा लालटन दिखानी पड़ेगी। पुण्यात्माओं तुम्हारा सौभाग्य है, आप जी को ये खजाना मिल गया। पहले हम जब स्मारक पना लगे थे ना, VCR चल रहे थे, इतनी लंबी बड़ी कैसेट वार दी, तीन तीन घंटे की एक, और वो ले करते किराए पर, अन्यों का अगर दे 100 रुपये एक रात के, तीनों सोचा करते तीन फिल्म ले चाल तीनों देखेंगे, चाह बनवाए जाते पिए जाते हर नौ देखे जाते 9 घंटे ताई तक 100 रुपये ला रखे, सारी कसर काटाएंगे, सारी बकवाद कराया करते। अरे यहां परमात्मा के नाम पर अमृत वर्ष है, आत्मा भीग रही है आपकी, ये सत्कर मानना, और बहुत से पाप कट रहे इस मालिक की इस अमृतवाणी से आपके, तो इसलिए दास चाहता है कि आप जी को इतना अधिक से अधिक डोज दे दूं ताकि ये रोग शीघ्र नष्ट हो जाए अज्ञान रूपी, और फिर जन्म मृत्यु का रोग कटेगा। एक कुमार ने कित शेर की खाल पाएगी खेतों में जंगल में, और उसने लाकर अपने गधे पर डाल दी, फिर उसके मन में आई कि इसने मारे दो लट खेतों में चला जा छक्का होगा सांझ ने, शाम ने दे दूंगा धक्के तड़के न पकड़ जाऊंगा, वो ऐसे कर दे। उसने शाम ने गधे पर शेर की खाल डाल के और खेतों में छोड़ा, और गधा खूब छक्के उड़े वो खेती थे, और रखवाले देखने जावे के हर निकट जावे देखे तो शेर बाज ने छोड़ के गांव में आ जा शेर आ रहा शेर आ रहा। एक हफ्ता हो गया उसने बहुत से वो खराब कर दी खेती, आसपास गांव में चर्चा बोली भाई शेर आ रहा है सारी खेती खराब कर दे। एक कुमार था समझदार सा, उसने सोचा दूसरे गांव का भाई खेती शेर खेती तो ना खाया करे, या जरूर कोई चाल पाओगी गधे पर खाल पाओगी, उसने आकर कहा गांव वालों से, भाई थारे सिर न तो मैं पकड़ दू, मैं क्यूकर पकड़ेगा कि मैं 5-4 गधे ले चलूंगा अपने, मैं देखी जाके एक आध गधे खा लेगा, पछाणता आ जाएगी शेर से के शेर खेती तो ना खाया करे। मैं बोला रहा मर जाएगा भाई, हम नहीं चलना गांव वाले के। वो कहने लगा भाई तुम नो करियो ऊपर वृक्ष पर बैठ जाइयो ऊंचे पर। बोला भाई ठीक सर। तो ऐसा ही किया, वो ऊपर बैठा दिए और वो गधे छोड़ दिए थोड़ी दूरी पे। वो कुमार ने अपना गधा छोड़ा और शेर थोड़ी देर में गधा ने बोली बोली फिर हु करन लागे, तो भी लागा हु करता हु। आया उछलता हुआ खाल कीता गधा में आके मिल गया, वह खाल उतरते गधा का गदार बोली तो मेरा पिट गया गधा है। जब गांव वाला नो कुमार भी गड़िया और गधा भी तोड़िया दे लठन, शेर की दाड़ गधे की ब्याह ब्याह नारा पता लग जाए। तो ज्ञान से इस बोली से पता लगेगा संत और असंत का। को पंडित जी काशी पटकाया था और उस नगरी के राजा ने किसी ने बता रखा है तू धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ याग करा ले, पाठ करवा किसी के जप करवा ले, जप कोई पाठ करा। ब्राह्मणा थे 7 ब्राह्मण बुलाने थे। अब मंत्री जी को पता लगा विद्वान पुरुष है राजा का काम है, को अच्छे छांट छांट के ब्राह्मण बुलाने पड़ेंगे। एक तो वो बुला लिया जो विद्वान पुरुष था। तो रोजाना एक सोने की मोहर दान करे, जो सोने की मोहर प्रथम दान की उस काशी विद्यापीठ से पढ़े हुए ब्राह्मण को, उसने अपनी पत्नी को दिया। उसकी पत्नी फिर नए नए सूट लाई, कितना बढ़िया श्रृंगार लाई। 2-3 दिन हो गए, पहले पानी के कुओं के ऊपर इकट्ठी हुआ करती गांव की स्त्रियां, तो नए नए पहन के चल रही। तो वो दूसरी ब्राह्मणी कहने लगी, ब्राह्मणों का अलग कुएं हुआ करते कि तू इतना पैसा कहां से लाओ हो तुम कि मेरा पति जो है ना राजा के वहां पाठ करने जाया करे, रोजाना एक असरफी देता राजा। उस ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि ऐसे ऐसे उसका पति राजा के यहाँ पाठ करने जाता है, अन्य सुना उड़े 7 ब्राह्मणा की जरूरत है अभी तक।

सामने के कसरफी मिल गई। अब तीसरी का और ऐसे ही तीसरी को पता लगा, उसने अपना पति सिंगार दिया कि तू विदा ब्राह्मण है, वो विदा बैठा। उसने पहले वाला तो बोला ठीक, दूसरा नौका दो यू के हुआ ऐसे ही, दो यू के हुआ ऐसे ही, और तीसरा नौका कब तक निभाएगी कब तक निभाएगी ऐसे ही। फिर एक चौथी ने और सिंगार दिया अपना, वो भी बैठ गया। तो वो पहला अपना पढ़ता संस्कृत, दूसरा कहता है जो यू कह हुआ ऐसे ही, तीसरा नौका कब तक निभाएगी, चौथा नौका निम्बण दो जब तक निभाएगी। अब इन पंथों ने गेला नौ बन रही है, अभी न सब ने पता लग गया थरी खाल उतर लग रही है, और तुम्हारे चेले ही भागने वाले हैं थोड़े दिन में, और उनके जो बना रखे ना परिचर, अब उनको पता लग लिया वही बात तो बिगड़ेगी, पर न्यू सोचे हैं देखी जाएगी इतने निम्बण दे जब तक निम्बेगी। तो पुण्यात्माओं परमात्मा बताते हैं, आग गए ना बावड़े रहते भी सब जा, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़ ठगाना ना, जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आवे, गरीब दास कर बंदगी भाई बहुर ना ऐसा दावे। होई होई। ऐसा सुअवसर मानुष जन्म या बिजली पिंडी और यथार्थ ज्ञान आपके सामने है, तो परमात्मा कहते हैं समझा है तो सर दर पाओ और बहुर नहीं रे ऐसा दाओ।

आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।

0: कैलगरी विच 24 घंटे सत्तो दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

सुनाते, दर बताते, नैया खेते, मिन्नत करते, रास्ता तकते, कितनी सदियां बीत गई हैं, अब जाकर ये भेद खुला है। जिसको तुमने अर्ज गुजारी, जो था हाथ पकड़ने वाला, जिस जा लागी नाव तुम्हारी, जिससे दुख का दारू मांगा, तोरे मंदिर में जो नहीं आया, वो तो तुम ही थे, वो तो तुम ही थे।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामां नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दी सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फिश या स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकदे हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आना चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैनी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
1: कैलगरी इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे 7 दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश किते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।

0: कैलगरी विच 24 घंटे सत्तो दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-44

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, North East, Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है यूनिट नंबर 2121 51 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North East Calgary. Program da eh hissa tuhade tak Cassidy Hay Injury Law ton Tara Cassidy ji de sahyog naal pahunchaya ja reha hai. Inna ton kise vi tarah de motor vehicle accident injury claim bare koi vi jankari lain layi tusi Tara Cassidy ji nu 403-777-1099 yani 403-777-1099 te sampark kar sakde ho. कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 एफएम ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करां ते कारां दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्यास मन लागी, प्यास मन लागी, प्यास

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

0: कैलगरी विद 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिनाच स्टूडियो दे नंबर उते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह दी जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो। ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: श्री दरबार साहब अमृतसर तो गुरबाणी कीर्तन दे सरवण ले आज ही अपनी आकारा ते करां दे रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम ते ट्यून करो। श्री दरबार साहब अमृतसर तो प्रसारित गुरबाणी कीर्तन हर रोज सवेरे 4 तो 8 बजे तक ते शाम 5 तो 6 बजे तक रिले कीते जांदे ने। पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम कैलगरी विच इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो है।
1: ज्यादा जानकारी लई कॉल कर सकते हो, फोन नंबर है 403-238-4 या विजिट करो www.

0: विस्मादरू विस्माद रंग विस्माद नागे फरे जंत विस्माद कौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड हे विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग स्माद विजोग विस्माद भुक विस्माद भोग विस्माद सिपत विस्माद सालाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख विडाण रहा विस्माद नानक बुजण पूरे भाग महला पहला
1: कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पौसुक सार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत सर्व आकार कुदरत वेद पुराण के बाद कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिंसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाके नाई पाक नानक हुक्म अंदर वेखै वरतै ताको ताक पौड़ी अपने को भोग कै होए पसमड़ और सिदाया।

0: सतिया मन संतोख विजय देने कै विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सो करे संसार छोरा जारा तै कूड़ियारा खारा बाविकार एक हुंदा खाए चले था उतना पहकाए कार जल सलजियां पुरियां लोआ आकार आकार ओए जिया कहे सो तुह जाने इतना पे तेरी सार नानक भगता भुख सलाहन सचनाम आधार सदा आनंद रह नराती गुणवंतिया पाशार महला पहला
1: मिट्टी मुसलमान की भेड़ पई कुम्हार कड़ भांडे पिता किया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे गया नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सत

0: हर इक्के हर इक्के।
1: श्लोक महला पहला। पुरखा बिरखा तीर्था तटा मेगा खेता हां दीपालवा मंडला खंडावर पंडा हां अंडज जेर उपजा खाणी से तजा हां सो मिट जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंत पाए के संभाले सबना हां जिन करते करना किया चिंता पे करनी ताहा सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जोहारी स्वस्थ तिस तिस दी बाण पग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तक महला पहला।
2: लख निकियां चंगियां लख कुना परवान लख तप पुती था सहज जोग बेबान लख सुतन संग्राम रण मैं छुटे प्राण लख सुची लख ज्ञान त्यान पढ़िए पाठ पूरा जिन करते करना किया लिखिया आवण जान नानक मती मिथया कर्म सचा निशान पौड़ी सचा।

0: रहो मैं चखना चाक महला पहला।
1: लिख लिख पड़िया ते ता करिया बो तीत पवया ते तो लव्या बो पेक किया दही दुख दिया सहवे जिया अपना किया। आने न खाया साथ गवाया बहुत दुख पाया दूजा पाया। बस्त न पहरे ऐन करे मोन विगुता क्यों जागे गुर मिन सूता। पगो पेताना अपना किया कमाना अलमल खाए सिर चाई पाए मूर कंदे पत गवाए। विणना में किस्ता न पाए रह बेवाणी मड़ी मसाणी अंध न जाने फिर पछताणी। सतगुर पेटे सो सुख पाए हर का ना मन वसाए। नानक नजर करे सो पाए आसंद से ते नह केवल हों मैं शब्द जलाए कौड़ी भगत रे।

0: कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माणी, कूड़ बैसनहार, कूड़ सोना, कूड़ रूपा, कूड़ पहनहार, कूड़ काया, कूड़ कपड़े, कूड़ रूप अपार, कूड़ मिया, कूड़ बीबी खप हुए खार, कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करतार, किस नाल की चै दोस्ती सब जग चलनहार, कूड़ मिठा, कूड़ माखियो, कूड़ डोबे पूर, नानक बखाने बेनती
1: जुगत जाने जियो धरत काया साधकिया विच दे करता भी सच ता पर जाने जा सिख सची ले दया जाने जी के किसी पुन दान करे सच तां पर जाने जा आत्म चीत करे निवास सतगुरु नु पुछ के बैर करे निवास सच सब ना होए दारू पाप कड़े तो नानक वखाने बेनती जिन सच पर ले होए पौड़ी दान महिंदा तलीखा जे मिले ता मस्तक लाइए कूड़ा लाल छदिए होए एक मन अलख ते आईए फते वे हो पाईए जे वे कार कमाईए जे होए पुर लिखिया ता तोड़ तिना दी पाईए मत थोड़ी सेव गवाईए सेव गवाईए सेव गवाईए
0: कार कमाई है जे होवे पूरब लिखिया ता धूड़ तिना दी पाई है।

एव अंगद आंग संग नानक गुरु देव गुरु अमरदास के गुरु रामदास जेव अंगद आंग संग ना।

0: थगन का कूड़ अगैर थवाओ महला पहला।
1: शाम कह सितंबर स्वामी सच में अच्छे साचरे सबको सच समावे। ऋग कह रहया प्रभु राम नाम देवा मैं सू नाय लय प्राच जाय नाय तो मुख अंतर पाहे। जुज में जोर चली चंद्रावल कान कृष्ण जादम पाया पार जात गोपी ले आया बिंद्रावन में रंग किया। कल में बेद अतर्पण हुआ नौ खुदाई अलो पाया नील बस्तर ले कपड़े पहरे तुर्क ठाणी अमल किया। चारे वेद चार पढ़ गुरु तीन चार विचार पाओ प्रगत कर नी सदाए तो नानक मुख अंतर पाए पौड़ी सतगुरु बेटो।

मन अंधा ना सुजान पौड़ी साहे हो दयाल कृपा करे ता साई का कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मन हो।

कहे सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे बिनवंत नानक।

विरद की पैज पंथ की जीता श्री साहेब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान वसाह दान परोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इसनान चौंकियां झंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखां दा मन नीमा मत उच्ची मत पात दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जियो श्री ननकाना साहेब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्ना तो पंथ नू वसोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभार दा दान खालसा जी नू बख्शो हे नमानिया दे मान नतानिया दे तान नियोटिया दी ओट तन तन श्री गुरु रामदास साहेब जीओ आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सच खंड श्री हर मंदिर साहेब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहेब जीओ महाराज आप जी दे हजूर सबद चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जियो जिन्ना जिन्ना गुरमुखां प्रेमियां वल्लों कड़ाह प्रसाद भेटा कीता गया है तिन्हां दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नू अपने दरों घरों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना सुभ भावनावां पूरियां करनियां आप जी दे हजूर कड़ाह प्रसाद दी देग हाजर है दर परवान होवै परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सुख होवै नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहे गुरु जी का खालसा।

0: पहला पहला जे मोहा का कर्म है पितृ दे अगे वस जानी है पितृ चोर करे वडी है दलाल के मुस्पिए करे नानक गे सो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला
1: ज्यों जोरू सर नावणी आवे वारो वार

पहला पहला सुचा होए सुचे बैठाए सुचे अगर क्यों को ना पिटियो जाए सुचा होए के जे व्या लगा पण सलोक कोती जाए सटिया किस लगा दो अन देवता पानी देवता बै संतर देवता लूण पंजवा पाया कीर्तन ता हुआ पाक पवित पापी सिवतन कड्या थुका पाया तित जित मुख नाम ना उचरे बिना विरसाए नानके में जानिए जित मुख थुका पाए।

0: हर नाम तरा वे।
1: श्लोक महला दूजा, एक नहीं आस की दूजे लगे जाए, नानका सकांडिये सदी रह समाए, चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा होए, आस एवं नाखिये जे लिखे।

अजूनी सैपं गुर प्रसाद चक्कर चिहन अर बरन जात अर पात नहन जिहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनपौ प्रकाश अमितोज कहिज कोट इंद्र इंद्राण साहे सहान गणिज तेर पवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत तो सर्व नाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत सुमत हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत षाड बिख बिख खाई माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियों गुर संगत तेहे मलांत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई हां अपराधी गुनहगार हां बेमुख मंदा चोर जार जुआर हों पार कर जो हंदा निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश ठगंदा काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार करंदा विश्वास काती अकिरत कान मैं को न रखंदा सिमर मुरीदा ढाडियां सतगुर बखसंदा सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे न जाए ओह अवनाशी पुरख है सब में रहया समाए बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कह सेवक जन मन परतख गुरु निसतारे दर्शन प्यासी दिन सुरात चित बहु अन दिन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत सुकह टल गुर सेविया एहन सुसहज सुभाय दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय होए सिफत खसामांदी मूर अरसों कुरसों चटी तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी
सज्जन सच्चा पातशाह सिर सहांद जिस पास बैठियां सोही सवना दा विसाह सज्जन सच्चा पातशाह सिर सहांद जिस पास बैठियां सोही सवना दा विसाह सतनाम श्री वाहि गुरु साहिब जी जैत सरी महला चौथा कार पहला चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा हियर रतन नाम हर बसिया गोर हर

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज का पता है 3501 23rd Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम का यह हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन पैटियो डेक प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराने लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
3: वाहिगुरु साहिब जी।

0: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैन लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जा फिर भजन सिंह जौहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। एबीएम कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या आईटी प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फेशिया स्मार्ट रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी ले पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street North East कैलगरी।

मूरख मुगदा जन्म पाया, परनवत नानक तिनकी शरणा। जिन तो नाही विसरया,

चिंता करे जिन उपाया जग तिस जोहारी स्वस्त तिस तिस दीवान अपग नानक सचे नाम बिन क्या टिक्का क्या तग तिस जोहारी स्वस्त तिस तिस दीवान अपग नानक सचे नाम बिन क्या टिक्का क्या तग। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सतगुरां दे अमृत बचन आसा की वार दी जो लड़ीवार विचार चल रही है उस विचार दे अधीन कल हजूर दी अठवीं पौड़ी दे नाल जो पहला श्लोक दर्ज है अंकित है इस दी विचार आपां प्रारंभ कीती सी। सतगुरु गुरु नानक साहिब जी महाराज उन्हां ने अपनी मुबारक रसना तो सब तो पहला बख्शिश भरिया बोले क्या जे करते दी मित नू कोई नहीं जान सकदा करतार दी अमितोज नू कोई बयान नहीं कर सकदा सच एवे के मेरे पार ब्रह्म परमेश्वर दी रची कोई रचना एदा अंदाजा भी ओ ला सकदा जिन्ने पैदा कीता मनुख दी खस्ती नहीं के रब दी बनाई कोई सृष्टि दा भी ए अंत पा सक। एदे विच हजूर ने परमेश्वर दी रची कोई रचना विचों इंसाना दा जिक्र कीता बनास्पति ब्रिक्षां दा जिक्र कीता तीर्थ अस्थाना दा दरियावां दे किनारियां दा हजूर ने जिक्र कीता आसमान विच उड़दे हुए बदलां दा जमीन ते खेतां दा टापुआं दा लोकां दा मंडलां दा खंडां दा वरपंडां दा फिर चार जिहड़ियां खाणियां ने अंडज जेरज सेतज ते उत्पज इन्हां दा जिक्र कीता ये सब कुछ गिणा के करते दा ते अंत सवाल ही नहीं पैदा हुंदा पर जो करते ने किरत कर दिती सच एवे ओदी किरत दा भी कोई बंदा अंत नहीं पा सकदा। जे बार मुखी असी देखिए कुदरत नू देख के करते दी याद आ जाए कुदरत दी बेअंतता नू देख के करते दी बेअंतता विच बंदा चला जाए चेते रखियो उस बेअंतता विच डुब जाना भी एक परमात्मा

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता, तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300, 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।
3: तन ओ मस्तक, तन ओ

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह के ब्याह शादी के प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करने की जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हॉल का पता है यूनिट नंबर 28 पंजा होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह के कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डीजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 23 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हॉल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हॉल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हॉल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर केटरिंग स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर

कैलगरी दे इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो ते आओ हुण सरवण करिए गुरमत विचार भाई पिंदरपाल सिंह जी दी रसना तों।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें। वाह।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट, टायर रोटेशन एंड रिपेयर दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रोंग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा ABM कॉलेज के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह के हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स की जानकारी लेने लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साड़ी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम का यह हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड के सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आना चाहता है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैनी चाहते हो तो इस दी जानकारी लई कॉल करो bobby.dodd@403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, North East, Calgary।

0: सच्चे पातशाह जी दे जीवन दे संबंधी एक किताब लिखी गई है जी स्या ते ओ बाबा नानक उहदे विच जिक्र हुंदा है कि सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी ने इत्थे जिवें पीर बहलोल का जिक्र चलता सतगुरां उन्हां ते रहमतां वरताईआं जां दस्तगीर वर्गियां का जिक्र चलता उन्हां ते बड़ी बख्शिश वरताई इत्थे एक मुसलमान औरत रहिंदी है जी जिहदा नाम है सलीमा। मैं सिर्फ संखेप बेनती करांगा ध्यान रखना धन गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जदों इत्थे आए ना ते सलीमा महाराज का कीर्तन सुन वास्ते रोज आउंदी है जी टिकी हुई रात दे विच सतगुरु कीर्तन करदे जिवें आप जी गुरु पातशाह जी की हजूरी विच आपां सारे बैठे आ उस वक्त महाराज के चरणों विच जदों टिकी हुई रात दे विच कीर्तन सुनदे आ समा आया इहदा पति जैजा गुलाम मिश्र दे विच व्यापार करदा है जी। एक दिन व्यापार वास्ते गया वो की होया जी अचनचेत इहदा जिहड़ा ऊठ सी जी अंगूरां दे खेत नूं पै गया ते उसे वक्त उस अंगूरां दे खेत दे मालक ने एक पत्थर चुकिया ते जदों जोर नाल ऊठ दे मारिया जी उहदे टिकाणे लगे उहदी मौत हो गई आ। उही पत्थर चुकिया ते इस जैजा गुलाम ने कहिंदे जोर नाल पत्थर उस बंदे दे सिर विच मारिया जी उस अंगूरां दे खेत दे मालक दी मौत हो गई। ते मिश्र दा एक वड्डा फैसला ए सी जी खून का बदला खून कचहरी च लोक इकट्ठे होए गल मुक गई वह कहिंदे जी भी दसो हुण फैसला किवें होए कहिंदे जां तां पैसे देवे ते जां इहदी मौत होएगी जां इहनूं मारिया जाणा फाहिला देवांगे। वह कहिंदा जी भी चलो मैं तुहानू पैसे लिया दिना पर पैसा इत्थे नहीं मेरे घर दे विच पिया मेरे कोल कुछ नहीं गा मैं घरों लिया के देवांगा। वह कहिंदे भी अपना गवाह दे के जा कहिंदे जी इस इलाके च मैं जानदा किसे नूं नहीं गवाह किन्नू देवा। इत्थे फिर एक बजुर्ग ने हथ चक के गल कही कहन लगे भलिया भी जा तू पैसा लेके आ तेरी गवाही मैं देवांगा। समा आया जी वह पैसे लेके जदों घरों वापस मुड़िया ना सलीमा नूं मिलिया कोई नहीं ते जदों इस कचहरी दे विच पैसे देण दी गल आई आ पैसे देण वास्ते हजे कचहरी दे नेड़े पहुंचिया ते आवाज आउंदी पई आ कहण लगे तुहाडा बंदा जिहदी गवाही तुसीं देण लगे हो वह पैसे लेके अजे मुड़िया कोई नहीं ते उहदे बदले तुहानूं मार दिता जाएगा तुहानूं फाहे ला देना भी क्योंकि तुसीं उहदे जामण बणे हो तुसीं उहदी गवाही दिंदे पए हो। ते उस बजुर्ग ने एक शब्द वरत्या सी कहण लगे भलिया जिहदी गवाही मैं देवां ना उह इत्थे मुकरदा ना उह अगे मुकरदा जिहदी गवाही मैं भर देवां। आखिर जी पैसे दिते गल मुक गई लोक आपो अपने घरां नूं जाण लगे आ पुछिया जैजा गुलाम तो कहण उह पुछदा है कहिंदे भी मेरा जिन्हें गवाही दी मैं उन्होंने मिलना चाहना भी कितने है कहें जी वह तेरा ही बंदा ही तेरे नाल आया सानू कोई नहीं पता। यह जदों हुण घर नूं वापस आउंदा ना लोकां भी दिमाग दे विच इहो जी गल पा दित्ती आ कि तू आप मिश्र दे विच जां होर इलाकियां दे विच व्यापार करना तेरी घरवाली स्रोत सुन वास्ते जांदी आ। हिंदी पीर उत्थे शब्द वरत्या गुरु नानक साहब दे लई महाराज ने अज ताजदीन एक बचन कह कहन लगे ताजदीन एक काम कर भी सलीमा नूं कह भी अपने घर चली जाए। सलीमा उठी आ इहने जदों अज पहली बार होया नहीं दूरों मत्था टेक के दूर बैठ जांदी सी अज गुरु नानक साहब जी दे कोल आई महाराज दे चरणां ते नमस्कार कीती है जदों मत्था टेकिया ना ते सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी ने सीस दे उत्ते हथ रखे आ ते अज नेत्र भरे आए अमृत नीर दे नाल क्योंकि रहमत वरत गई ना जिहदे सीस ते मेरा सतगुरु हथ रख देवे। ते पातशाह ने बचन कहा महाराज कहिंदे सलीमा आ जिहड़ी दात मिल गई सतगुरु कहिंदे उहनूं हिरदे विच सांभ के रख लई। बचन कहा सतगुरा घर आई घर आउंदिआं सार पति बड़ा उच्ची बोलिया बहुत कुछ बोलिया कहिंदे कित्थे गई सी बहुत गल्लां कीतीआं जी। इहनें सुणदिआं सुणदिआं एक गल कही कहिंदे वी मैनूं इह दस वी जिहड़ा मिश्र दे विच कतल होया सी उहदा की बड़िआ उच्ची बोलदा सी सुर डीवी हो गई कहिंदा मैं तैनूं मिलिआ नहीं तैनूं दस की नहीं दित्ता। कहिंदी जी तुसीं इह गल छड्डो तुसीं लोकां दीआं गल्लां दे विच आ के मेरे ते शक ना करिओ मेरी एक बेनती सुणो वी जिथे मैं स्रोत सुन वास्ते कीर्तन सुन वास्ते जांदी हां तूं कल मेरे नाल चली। गल मन ली। धन गुरु नानक साहब महाराज सचे पातशाह जी भाई बाला मरदाना सतगुरां दे नाल बैठे आ, कीर्तन हुंदा पे है, सतगुरु जी बाणी दा कीर्तन करदे आ। जदों दा चिट्टा दिन चढ़िया, लोह लगी, सलीमा दा घर वाला जहिदा गुलाम एकदम उठिया, उठदिया सार उच्ची आवाज दे विच कहन लगा, सलीमा यह तां उही बजुर्ग है जिहड़ा मिश्र दे विच मेरी गवाही दे के आया। धन गुरु नानक साहब महाराज सचे पातशाह मुस्कराए, महाराज साहब जी कहन लगे कोल आओ, कोल बुलाया, एक बचन कहा पातशाह, कहन लगे तेरी गवाही तां दित्ती, तेरा उथे जावन सतगुरु कहंदे असी तां बड़े क्योंकि तेरी घरवाली रब्बी गुरबाणी का कीर्तन सुनती रही आ। पातशाह जी ने फिर इथे बचन कहा, महाराज कहन लगे कली इथी गवाही नहीं, पातशाह कहंदे तू भी अल्लाह ताला खुदा दे रस्ते ते चले, रब परमात्मा नूं सिमरे। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे मैं तेरी उथे भी गवाही देण वास्ते तैयार हाँ। ताई महाराज जी ने बचन कहा, असी जदों सतगुरां दा बचन पढ़ दिया ना कि नानक कचड़ियां स्यों तोड़, ढूंढ सज्जन संत पक्कियां, ओए जी बंदे विछड़े ओए मोया ना जाई। छोड़ मैं जिहड़ी बेनती कर रहा सी, गुरु रामदास महाराज जी बचन कर रहे हैं, मेरा ही अर है रतन नाम हर बसिया, गुर हाथ धरियो मेरा माथा, मेरे सतगुरु जी ने मेरे सीस दे उत्ते मेरे सिर ते रहमत भरिया हाथ रख दिता, मैनू नाम की दात बख्शिश कर दिती, मैनू ओ नाम की दात बख्शिश की जो गुरु नानक साहब महाराज जी धुर दरगाह सचखंड दे विचो लेके आए आ। उस नाम ने मेरा हालत दे पलत सवारना है, जिस नाम का करके सतगुरु कहंदे जो हिरदे विच परमात्मा का नाम आ गया जी,
1: जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे, गुर नाम दियो रिन लाथा।
0: सतगुरु कहंदे भी परमात्मा परमेश्वर वाहेगुरु जी का नाम सतगुरु जी दे सतगुरु सिर ते हाथ रखदे हिरदे विच वस गया, क्योंकि महाराज ने उपदेश दिता जपिया ना। गुरु तेग बहादुर साहब जी का एक वचन होर सांझा कर देंदा, असी जिस इंसान नूं तुसी देखो जी दुनिया विच बंदा वार हुण साढ़े घर परिवार बच्चे असी वार वार याद करदे आ, ओ अंदर बिल्कुल उहदी लगन लगी है, दुनिया के किसी भी कोने विच बंदा चलिया जाए उहनूं चेते रहिंदा है, पर परमात्मा परमेश्वर वाहेगुरु सच्चे पातशाह माफ करना मैनूं कहण दी आग्या देनी, रब इंसान दे याद उदो आउंदा जी जिन्हां नूं भगत साहब जी ने बचन कहे काम परै तो सिमरिया, ऐसा सिमरो नित, जदों कोई कारज बन जांदा उदों आके रब अगे अरदासां करदे आ। पातशाह कहण लगे भलिया जदों तू वार वार परमेश्वर दा नाम सिमरेगा, गुरु तेग बहादुर साहब जी कहंदे आ सिमर सिमर के उस परमात्मा दा नाम तेरे हिरदे विच वसेगा जी। राम नाम उर मैं गहेओ जाकै सम नहीं कोई, जिस परमात्मा दे नाम दे वर्गा दूजा दुनिया विच है ही कोई नहीं। राम नाम उर मैं गहेओ जाकै सम नहीं कोई, जेहे सिमरत संकट मिटै दरस तुहारो होए। जिस परमात्मा दे नाम नू सिमरन दे नाल पातशाह कहंदे वड्डे वड्डे जिहड़े संकट हन दुख हन कलेस आ उह टल जांदे ने जी। ताई बचन असी पढ़दे आ कि तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास ताको बिघन ना को लागै जांकी प्रभ आगै। अरदास प्रभ आगै, अरदास की है जी, अरदास परमात्मा दा सिमरन है, रब दी याद है, परमात्मा दी बंदगी है जी। परमेश्वर वाहेगुरु जी नूं जदों भी कोई जिथे जिस समय कोई याद करदा है, जिन्हां ने रब परमात्मा नूं सिमरिया। मैं फिर बेनती करा संगत जी, असी 15 भगत साहिबाना दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच असी पढ़दे आ, एक एक भगत का जिक्र, चलो मैं दो का जिक्र आप जी नाल कर जाना। एक भगत वो है जी जिन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर रही, पर उन्हां दा नाम जरूर बाणी दे विच लिया गया क्योंकि वह परमात्मा की बंदगी करन वाले आ। एक परमात्मा का नाम जपण वाले भगत साहब जी वह हैं जिन्हां दे कारज सतगुरु आप सवारदा पिया, क्योंकि नाम ने ही यह सारी कला वरतौड़ी आ। सतगुरु जी का वचन पढ़िया ना, गुरु रामदास महाराज जी का ही वचन आ, हर युग युग भगतो पाया पैज रखदा आया, राम राजे हर नाक्ष दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया, अहंकारियां निंदका पिठ दे नाम देव मुख लाया, जन नानक ऐसा हर सेविया। फिर की होएगा जी, अंत लए छड़ाया परमात्मा का नाम अंत दे समय छड़ा लेगा। ज्यों ज्यों परमात्मा के नाम असी जपते जावांगे ना जी, ते महाराज साहब गुरु रामदास जी कहिंदे आ जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे। जन्मां जन्मां दे जिहड़े कहिण लगे वड्डे वड्डे दुख हन, रोग ने, संकट आ, कलेश आ, महाराज सच्चे पातशाह जी कहिंदे वी उतर जांदे ने। गुर नाम दियो ऋण लाथा, गुरु साहब जी ने मैनू जो नाम की दात बख्शिश की उस नाम का करके महाराज साहब जी कहिंदे ना नाम दियो ऋण लाथा। ऋण का अर्थ हुंदा जी करजा, जिहड़ा मेरा पिछला करजा भी सी, कई बारी पेंडिंग रह जाता ना, पिछले जन्म दे विच की करके आए, बड़ा कुछ बंदगी नहीं की, सिमर नहीं किया, कई बार एडिया टेडिया जूंडा दे विच बंदा पिया रहिंदा। पर जिस दिन परमात्मा परमेश्वर वाहिगुरु जी की बंदगी की ना, तो फिर सतगुरु पातशाह जी ने कृपा रहमत ऐसी वरताई जी, जूंडा का जिहड़ा आवागौन का चक्कर से वह सारे का सारे नबेड़ दिता, वह मिटा दिता जी। जिहड़ा कर्ज सी सतगुरु पातशाह जी ने नाम दा करके कहिंदे उतार दिता है।
1: मेरे मन भज राम नाम सब अर्था।
0: भई इत्थे सतगुरु जी ने कहा मेरे मड, हे मेरे मड, उस प्रभु परमात्मा परमेश्वर वाहेगुरु जी दे नाम नू कहिंदे जप। मेरे मन भज राम नाम सब अर्था, उस परमात्मा दे नाम दी गल कीती गई है जिस परमात्मा ने कहिंदे अर्था दा लफ्ज़ी अर्थ हुंदा जी पदार्थ। जिस परमात्मा ने सानू पदार्थ दिते ने, याद रखना परमात्मा परमेश्वर वाहिगुरु जी दा नाम जपो। जपद्या जपद्या सतगुरु ना तां परमार्थ दी कमी रहण देन ते ना पदार्थ दी कमी रहण देन जी, ओ दोनों पक्ष ते महाराज साहिब सच्चे पातशाह जी रहमता वरता दिंदे आ। क्योंकि परमात्मा दे नाम दे विच सब तो वड्डी ताकत आ, रब परमात्मा दे नाम दे विच। सतगुरु पातशाह असी दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे बचन अरदास दे संबंध विच पढ़दे आ ना जी, जिहदे विच सतगुरु पातशाह जी ने बचन किया। महाराज कहिंदे तेग बहादुर सिमरे है घर नौ निध आवै ताए सब थिउणा जी सहाय। शब्द पढ़े महाराज साहब जी का दसम बाणी का बचन है जी, चंडी की वार की पहली पौड़ी है। ते कलगीधर पातशाह जी ने जिहड़ा बचन वरत्या ना कि घर नौ निध्या वै ताए, कित सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी के पावन बचन पढ़ो। ते सतगुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी कह रहे हैं ब्रह्म बिंद है तिस दा ब्रह्मत रह, एक शब्द लिवलाए नव निधि अठारह सिद्धि पिछे लगियां फिरै जोहर हिरदय सदा वसाए। जेड़ा बंदा परमात्मा परमेश्वर वाहेगुरु जी दे नाम नू अपने हिरदे विच वसा लैंदा ना, रब इन्नियां कदातां दिंदा जी, किसे चीज की कमी नहीं छड़दा गा, पदार्थां नाल घर ही भर दिंदा है। महाराज साहब सच्चे पातशाह जी ने बचन कहे, सतगुरु कहिंदे मेरे मन भज राम नाम सब अर्थ, उस परमात्मा परमेश्वर वाहेगुरु जी दे नाम नू जप। जिस परमात्मा दे नाम दा करके सतगुरु कहिंदे तेरे घर दे विच पदार्थ आए दे। देखो पदार्थ सतगुरु जी ने बख्श दिता, किसी चीज की भुख नहीं जी महाराज छड़ दे गए। तीजे पातशाह जी का बचन असी रोज पढ़ते हैं ना, महाराज साहब जी बचन कर रहे हैं साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा, सब गवाइया जिस परमात्मा दे नाम ने सारिया ही भुखा खत्म कर दित्तियां हन।
1: गुर पूरै हर नाम दृढ़ाया बिन नावै जीवन बिरथा।
0: सतगुरु गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी ने बचन कहे, महाराज कहिंदे पाई भी परमात्मा परमेश्वर वाहेगुरु जी दे नाम तो बिना जिहड़ा जीवन आ ना यह ब्यर्थ है जी, रब दे नाम तो बिना ब्यर्थ जा रहा। असी जदों गुरु पंचम पातशाह का बचन पढ़ते हैं महाराज साहब जी कहिंदे दे भई प्राप्त मानुख देहुरिया गोबिंद मिलन की इह तेरी वरिया, अवर काज तेरा कितै ना काम मिल साध संगत पज केवल नाम। सरंग जाम लाग भवजल तरण कै जन्म ब्रेथा जात, किवें गया जी रंग माया कै, माया ने अपना इहोजी कला वरताई, इहोजी खेड वरताई, रब परमात्मा परमेश्वर वाहेगुरु जी तो दूर लेके चली गई आ। याद रखना सतगुरु पातशाह जी बचन कर रहे हैं महाराज कहिंदे भाई परमात्मा दे नाम तो बिना जिहड़ा जीवन आ यह व्यर्थ आ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਗੁਰ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰਨਾਮ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜਿਸ ਨਾਮ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਠਤ ਸੁਖੀ ਆ ਬੈਠਤ ਸੁਖੀ ਆ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਸੇ ਬੁਝਿਆ ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸਵਾਮੀ ਸਗਲ ਘਟਾਕਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੋਏ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਗ ਅਚਿੰਤਾ ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਤੂ ਵਰਤੰਤਾ ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਰੜਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਅਰਥ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ
1: ਰਹਾਓ
0: ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ

सतगुरु जी वचन कर रहे हैं महाराज कहते ना कि परमात्मा परमेश्वर वाहेगुरु जी दे उपदेश तो बेड़ा बिन गुर मूड़ जिन्हों का गुरु के चरणों नाल प्यार नहीं। महाराज साहब जी कहते वह मूर्ख हन अनजान दे बिन गुर मूड़ पए है मनमुख पातशाह कहते माया के पिछे लगे आ मन दे वल मूह आ गुरु साहब तो परमात्मा तो बेमुख होए पए आ ते सतगुरु महाराज सचे पातशाह कहते माया दे विच विशे विकारां दे विच सतगुरु पातशाह कहते नित ही

0: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड के सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आना चाहता है या तुसी कैनेडा विच रहंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लेनी चाहते हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130-4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी लई पॉल सेखू जी नूं 403-829-5000 जां फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड का पता है यूनिट नंबर 11 2316 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347। रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंड

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैन लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैन लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111 एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144-3670 63rd Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी उर्दू मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।
0: पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश किए जाते ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।
3: कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
4: आपका सौभाग्य है कि आपको इन सदग्रंथों के दर्शन हो रहे हैं और साथ में ये अनमोल ज्ञान आपके सामने निर्णायक हो रहा है। अब आपको दिखाते हैं कि वो ऋषि महर्षि ये नकली क्या कहा करते थे और कहते थे कि हम वेदों को सही मानते हैं, वेद ज्ञान सत्य है, लेकिन उनका अपना अनुभव वेदों के विपरीत था। ये है श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार और चिमन लाल गोस्वामी। ये कहां से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर से। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी का के विचार दिखाते हैं। पांचवा स्कंद श्री संक्षिप्त देवी भागवत 282 और 283 पृष्ठ पर 282-283। व्यास जी कहते हैं देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे। ये बृहस्पति जी के विचार हैं। प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता। यानी जो प्रारब्ध में पाप लिखे हैं या

चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करें। अब ये है देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के अपने अमृत वचन। ये कह रहे हैं कि भाई पाप जिसको गणा दुख से उसके पाप कटन लाग रहे हैं, कटने दो, और जिसके सुख गणे हैं, जिसको सुख है उसके पुण्य नाश होने लाग रहे हैं, वो होंगे ही होंगे। ये तरीका है। और फिर क्या कहा है कि विद्वान पुरुषों को चाहिए कि दुख में भी सुख का अनुभव करे। अरे भले आदमी पेट में दर्द हो रहा हो, किल की नहीं मारेगा आदमी। किसी के पेट में दर्द हो और उन्हों कहे कोई बात नहीं, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तू बस इस दुख में सुख को अनुभव करे। सुख तो अनुभव जब होगा जब उसको इसी जड़ी मिला, पेट का दर्द ठीक हो, और फिर आपका सुख में अनुभव हो गया। इन नकलियां की बात नाम ने फाइनल मान रखी थी, क्योंकि संस्कृत बोलिया करते। आजकल जो एक और बीमारी चल रही है, जो घनी अंग्रेजी बोल रहे हैं ना, उसकी तरफ अट्रैक्टिव होते हैं। वह विद्वान में पढ़ा है उसने, मनमाना पंजाबी ना आती हो, उसने संस्कृत ना आती हो, के विद्वान हुआ। भाषा का काम है अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना, चाहे अपनी मातृभाषा है, वो ज्ञान सही हो उसमें। तो इन महापुरुषों ने एक अनमोल काम किया, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से परिचित होने के बाद, और स्वयं परमेश्वर कबीर जी ने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आम आदमी भी बोल सुमन सके, और इसी भाषा में वो ज्ञान बोल दिया। तो वो संस्कृत बोला करते, इसलिए हमने सोचा करते तो विद्वान न पड़े है। एक बार जींद जिले में वहां एक जोड़ है तालाब, जिसमें ऐसा बुंडा पानी गधे भी ना पीवे, और उसमें ये नाका आया करे बोली आत्मा, जिनको मोस नान की कोई बता रखी क्रियाएं और उसमें मोक्ष मानते हैं। वहां एक गीसा पंथियों के आश्रम है दो, और गीसा साहेब जी जो थे वो कबीर परमेश्वर के शिष्य हुए, उनसे उनको परमात्मा सतलोक से आकर मिले थे, उन पुण्यात्माओं में से, लेकिन उनके अनुयायी उस यथार्थ ज्ञान से अपरिचित हैं। वो पिंडारे में आश्रम बनाकर अपना चिमटा गाड़ रहे हैं। ये दास वहां इन कबीर पंथी होने के कारण इनके संपर्क में रहा करता था, चला जाता था, कोई समागम करवाते थे तो ये दास वहां गया हुआ था। तो वहां वो क्या कराते हैं, श्याम को सत्संग करते हैं, उनकी अलग से एक स्टेज तकत से डाल दिए जाते थे, जो आमंत्रित वक्ता होते थे संत, उनको टेबल पर बैठने के लिए उन तख्तों पर श्रद्धा से वहां विराजमान कराते थे, और फिर उनको नंबर वाइज बोलने का टाइम देते थे। तो उनमें एक ऐसा था, वो क्या कहता था कि जीव, ये जीव अपनी अज्ञानता के कारण अपने आप को जीव समझता है, ये तो परमात्मा है, ये तो आत्मा है, आत्मा को कष्ट होता ही नहीं, ना गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है, आत्मा को कोई दुख नहीं होता, ये कष्ट तो शरीर को होता है। वो पता नहीं पांच चार उदाहरण दे दे, पर सारे श्रोता नो कह सही बात कहे। अब जो आम सुनने वाले ज्ञान से हटकर कोई ज्ञान दे है, वो भी अच्छा लग गया करे। तो तीसरा दिन हो गया, जैसे आज वाली रात ने अगली रात ने दो दिन हो गए, उसने नूका तेर, वो जो दूसरे वक्ता थे वो फीके पड़ गए। अब श्रोता तो इसकी बात में गर्दन लावे हैं, और यही तरीका था उनके शास्त्रार्थ में उनके ज्ञान को सराहने और बेसराहने का, को ताली पीट देते हर को वाह वाह वाह नो कर देते हैं, तो दूसरे पड़ जाते थे फीके। तो दूसरे वो वक्ता थे, उन्होंने सोची भाई उसने तो सारी जवाब लूट ली और बात करे बकवाद। क्या कह रहा है वो, एक दिन कभी एक बार मैं चला जा रहा था, एक व्यक्ति को बहुत पीड़ा थी और वो चिल्ला रहा था चारपाई पर। मैंने उसको कहा अरे भोले जीव, तू जीव नहीं है, तू तो आत्मा है, तू शरीर नहीं है। और मैंने उसको ऐसा कहा, एकदम उसकी बुद्धि फिर गई, उसने अपने आप को आत्मा मान लिया, उसकी पीड़ा खत्म। वो कहता भी तेरे को पीड़ा नहीं, शरीर को पीड़ा है, तू क्यों रो रहा है। तो एक दिन क्या हुआ कि वो तीसरे दिन शाम ने सत्संग कर लिया, और वो उनके अलग अलग कमरे थे, उनमें वो चले गए, बाबा जी वो मंत्र संत थे,
तो 2 बजे सी उसका

पेट में दर्द हो गया उस वक्त तक, दोनों कहता था तू तो आत्मा है, आत्मा का पीड़ा नहीं होती, शरीर का दर्द है, शरीर भोग लेगा अपना, आत्मा को इससे क्या लेना देना। उसका पेट में दर्द हो गया, मारे किल की बुरी तरह डड्डा व डांगर की डाल। वो दूसरे आश्रम के संत के पास कार थी, वो उस आश्रम वाला जिसमें सत्संग हो रहा था वो साथ साथ थे, थोड़े फैसले गेट थोड़ी दूरी का नौ द्वार लगे, तो वहां से कार मांग के लाए। वहां से 3-4 किलोमीटर है मेन हॉस्पिटल, ये शहर पंडारा से जींद, वहां ले गए। तो सुबह लाए उसने 6-7 बजे, 2-3 घंटे वहां रखा, ठीक हो गया उसका, दवाई बट्टी आराम लग गया। तो वो शहद शहद उतर के चल रहा है, जो जबरदस्त चाचा लग रहा है गाड़ी में थे, और वो कमरे में बढ़ गया अपने में। और पीछे पीछे वो दूसरे वक्ता ने बोले रहा, बाबा जी तू तो आत्मा था, क्यों डिड्डा हुआ था मेरे, तू तो क्यों था काले, अब चिल्ला रहा था, तू तो आत्मा है, तुझे पीड़ा कहां से होगी, दुख में भी सुख का अनुभव कर। ये बृहस्पति जैसे विद्वान, सुख का अनुभव तो जब हुआ जब उसके पेट की पीड़ा उस औषधि ने खत्म कर दी। इसी प्रकार ये राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के विचार आपको दिखाते हैं। पुणात्मा ये राक्षस क्यों कहन लागे न, बाकी तो ये एक ही पिता की संतान है ब्रह्मा जी के, लेकिन ये क्या करते थे, ये इन पर विकार ना छूटे और साधना भी करते रहे, तो वो अलग कर दिया उनको भी, तुम नारे रहो, तुम विकार नहीं छोड़ते, निकाल दिया जाता था साधना से। तो वो साधना भी करते रहे और मांस मिट्टी भी खाते रहे, इसलिए उनको राक्षस कहने लग गए। अब ये प्रह्लाद उसी ग्रुप में था। अब देखिएगा ये वही श्रीमद देवी भागवत, अब चौथा सकंद है ये, अभी आपने पांचवा सकंद देखा था, चौथा सकंद 243 पृष्ठ पे, और ये है संक्षिप्त देवी भागवत। व्यास जी कहते हैं, व्यास जी राइटर हैं इस पुराणों के, व्यास जी कहते हैं कि प्रह्लाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए, उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानवों तुम मेरे यजमान हो, भक्त हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए, अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। यहां तक तो इसने अपनी बता दी, जो सट्टे मारने थे मार दिए। आगे के क्या है, धर्म के मर्मज महाशय, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है, यानी ब्रह्मा जी इनका ज्ञान का स्रोत है सभी का, देवताओं के गुरु बृहस्पति का भी और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य का भी, यानी ब्रह्मा जी को फाइनल मानते हैं वेद ज्ञान दाता। प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बता रहा हूं, सुनो, यह वचन बड़ा ही हितकर है, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था, ब्रह्मा जी का ज्ञान बता रहे, उन्होंने कहा था, होने वाली बातें अवश्य होकर रहती है, धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके, विपरीत समय के कारण इसमें तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई है, अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से हार कर परास्त होकर पताल में जाना ही पड़ेगा। बताओ ये बोले आदमी भंडारा, यहां तक यू कह है कि मैं दानवो तुम मेरे भगत हो, तुम मेरे यजमान हो, भगत हो, तुमने डरना नहीं चाहिए और ना पाताल में जाना चाहिए, क्योंकि अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। और फिर है ब्रह्मा जी से सुना था मैंने कि प्रारब्ध तब भोगना पड़ेगा, तुमने एक बार परास्त होकर देवताओं से परास्त होकर धरातल पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं प्रारब्ध विफल कर सके, विपरीत समय के कारण तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है, अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पताल में जाना ही पड़ेगा। या बकवाद करने लग रहा, मैं रक्षा कर लूंगा। तो इनकी ये छुरी थी और न्यो बंडा रखे थे हम सारे अज्ञानियों ने। ये तो सतयुग के ऋषि महर्षियों का जिक्र है, एक यो कलयुगी ऋषि और था, इसके ज्ञान की खाल भी गिल तारनी पड़ेगी, जब क्योंकि इन पुराने तथा थोड़े बहुत से उल्टे से हो लिए थे, यू गणा बीच में टांग डाके घड़े भक्तों को बर्बाद कर गया।
ये देख, ये महर्षि दयानंद सत्यार प्रकाश है, इनके अनुभवों की पुस्तक ये सत्यार प्रकाश है। और इसको ये महर्षि दयानंद जी कहते हैं, मैंने वेदों के यथार्थ ज्ञान से युक्त कर रखा है, जो वेदों का ज्ञान है वो इसमें सरल करके मैंने लिखा है। तो आम आदमी ने न्यो सोच लिया था कि भी महर्षि दयानंद तो वेदों के ज्ञाता है, और जो इन सत्यार प्रकाश नामक अपनी रचना में लिखा है वो फाइनल है, सही है। तो इन हमने वेद पढ़ने भी छोड़ दिए थे, इस सत्यार प्रकाश पर हम आश्रित हो गए थे, और इसी कारण से ये सारा काम बिगड़ गया। इसमें के लिखा सत्यार प्रकाश के विषय में कि वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाण ही संविता है। ये किसने लिखा कि वेद आदि सद शास्त्रों के प्रमाणों के द्वारा इसकी रचना की गई है? श्रीमत परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर पंजाब से, और मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ गोहना मार्ग रोहतक, ये इनका दूरवास। तो इसमें सातवें समुल्लास में 154 पृष्ठ पर तो ये कह रहा है परमात्मा निराकार है, ये तो 155 पृष्ठ है, और ये सत्यार प्रकाश है 154 पृष्ठ पर। इसी ने पूछा, प्रश्न किया कि ईश्वर साकार है वा निराकार, स्वामी जी ने उत्तर दिया निराकार। अब 155 पृष्ठ पे किसी ने प्रश्न किया, क्या भक्ति भगवान की साधना करनी चाहिए? स्वामी जी कहते करनी चाहिए। प्रश्न, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए वा नहीं? उत्तर, स्वामी जी कहते करनी चाहिए। प्रश्नकर्ता कहता, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा, पाप नाश कर देगा? उत्तर, स्वामी जी कहते नहीं, पाप नाश नहीं होते। तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना, फिर किस लिए करें भक्ति? प्रश्नकर्ता ठीक प्रश्न कर रहा। उत्तर कहते हैं स्वामी जी के, उनके करने का फल अन्य ही है। वो क्या है? उत्तर, प्रश्नकर्ता ने पूछा फिर वो क्या फल है? अब स्वामी दयानंद जी का उत्तर है, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निर्विमानता, और उपासना और उत्साह और सहायता मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे वाह देवता, यहां तक है भगवान निराकार, और फिर नौके अगले पृष्ठ पे नौके उपासना से परब्रह्म से मेल, यानी ब्रह्म तो भी दूसरे भगवान से मिल ले जाके और परमात्मा का ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है और पाप नाश नहीं होते हैं। इसने 163 पृष्ठ पर कति डिफाइन किया इस बात को। प्रश्न, ईश्वर अपने भक्तों के पाप अक्षमा करता है वा नहीं? अक्षमा करना या नाश करना एक ही बात है। उत्तर स्वामी जी का, नहीं, पाप अक्षमा नहीं करता। अपने आत्माओं, आपने जो छोरी पढ़ी इसकी कि उपासना से पाप नाश नहीं होते, साधना से और लाभ मिलते हैं, क्या मिलते हैं कि परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार हो जाए। अरे भले आदमी हो, एक मोटी सी बात है, कोई साबुन बेच रहा साबुन, और साबुन के गुणों में तो लिखा हुआ है कि साबुन कपड़े का मैल नाश कर देता है, और किसी ने बोर्ड ला रखा है बहुत बड़ा थोक विक्रेता साबुन का, और उससे कोई पूछा भी ये साबुन कपड़े का मैल छुड़वा देगा, नाश कर देगा? और वो न्यू कहे कि साबुन से कपड़े का मैल नाश नहीं होता, और केला वो है कि साबुन से कपड़ा मजबूत हो जाएगा। तो उस व्यक्ति ने अपने जीवन में साबुन देखा भी नहीं है, प्रयोग तो बहुत दूर की बात, और बोर्ड ला रहा है साबुन विक्रेता, वो ठग है, लकड़ी के गुटके कागजाम लपेटे बैठे है, दुनिया को मूर्ख बना रहा है। और जैसे किसी ने वैद्य का बोर्ड ला रखा हो और वहां जाकर कोई कहता कि वैद्य जी क्या औषधि खाने से रोग नाश हो जाएगा, और वो नकली वैद्य कहे कि औषधि खाने से रोग नाश नहीं हो सकता, औषधि से रोग नाश नहीं होता, तो फिर क्या होता है कि पहलवान बन जाएगा, तो क्या वो वैद्य है और नालायक आदमी? ऐसा सिद्धांत है इस महर्षि, नकली महर्षि दयानंद का,
कहते भगवान की उपासना से, परमात्मा की साधना से पाप नाश नहीं होता और परब्रह्म से मेल हो जाए साकार है। बिना मेल किस तो होगा, उसका साक्षात्कार किससे होगा? वास्तव में परमात्मा साकार है, मनुष्य दृश्य है। और ये अभी तक जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं उन्होंने परमात्मा मिला नहीं, अभ्यास कर कर छक लिए, आखिर में बता दिया तो निराकार है, दिखता कोई ना इसलिए निराकार है क्योंकि उनकी रेंज, उनकी भक्ति से उनकी दिव्य दृष्टि की रेंज बनी नहीं जो परमात्मा को अपने स्थान पर देख सके। उनके अंतःकरण की जो दूरबीन है वह कमजोर है, कंडम हुई पड़ी है और उसको साफ करने की विधि उनके पास है नहीं, उसको मेंटेन करने की। तो इसलिए उन्होंने लिख दिया भगवान निराकार है। अपनात्माओं, वेद जो है परमेश्वर के गुण है, वेदों में उसकी यथार्थ जानकारी है। जैसे साबुन के गुणों में साबुन की जानकारी होती है कि वो मैल नाश कर देता है पानी के योग से, तो ऐसे ही वेदों में प्रभु के गुण लिखे हैं कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देता है। पुणात्माओं, ये उदाहरण आप जी को दिए जा रहे हैं जिससे आपका दिल डटेगा, आपको विश्वास होगा कि या तो वेद झूठे हैं तो फिर भक्ति करनी है छोड़ दो, फायदा क्या। और यदि वेद सच्चे हैं, और ये भी कहता है, योगदानंद भी कहता है कि वेद में जो ज्ञान है वो सच्चा ही देखिए यजुर्वेद, और वेद ज्ञान सच्चा है तो फिर वो परमात्मा पाप नाश करेगा, लेकिन उसकी विधि मिलनी चाहिए श्रेष्ठ, ये देखिएगा, ये यजुर्वेद है और इस दानंद जी द्वारा ही इसका अनुवादित है। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, 2/5 महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 2/5 महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाषा भाषा यानी अनुवाद हिंदी में, पूरे 40 अध्याय इसमें सारे महर्षि दान सरस्वती ने किए हैं। ये कहां से छपी है? मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ये है यजुर्वेद का 8वां अध्याय, अष्टमोध्याय, 241 पृष्ठ पर इसकी केवल संस्कृत मूल भाषा लिखी है। 8वें अध्याय का 13वां श्लोक है, मंत्र है। इसमें लिखा है देव कर्तस्य एनस्य एवज नमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य एवज नमसि, पितर कर्तस्य है एनस्य एवज नमसि, आत्म कर्तस्य एवजनम एनस्य असि, एनस्य एनस्य ओहो एनस्य एनस्य एवजनम असि, यानी इसकी अनुवाद यानी के द्वारा दिखाते हैं। अब अनुवाद तो इसने ठीक करना पड़ा, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी गुंडी अड़ा गया, या भगवान ना लिखा, या लिख दिया हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। और ये सत्यार प्रकाश के प्रथम समलास में भगवान के नामों के गुण वर्णन करते हुए कहता है, जहां मित्र सबका मित्र होने के कारण परमात्मा का नाम मित्र है परमेश्वर का, तो हम यहां मित्र शब्द ही लेकर चलेंगे। मित्र माने परमेश्वर है। हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा ना, ये फिर बिचड़ा लेंगे नकली। पहले सन 2003-04-05 में हमारा और इन आर्य समाज के आचार्यों का ज्ञान के ऊपर विवाद चला था, जिसके कारण ये क्रोथाकांड हुआ। समाचार पत्रों में हमने यही लिखना प्रारंभ किया था कि महर्षि दानंद का सत्यार प्रकाश वेदों अनुसार खरा नहीं है, और ये प्रमाण दिए थे इस सत्यार प्रकाश के पृष्ठ भी और साथ में यजुर्वेद का ये सब प्रमाण। तो उन्होंने फिर वो साथ में फिर उसका उत्तर देते थे समाचार पत्रों में, एकादिव है, उन्होंने लिखा था कि उसमें तो मित्र के बारे में लिखा है, 8वें जाके 13वें श्लोक में यजुर्वेद में, वो किसी भगवान के बारे में थोड़ा ही है। तो आम जनता बोली बाड़ी थी, पहले तो ये विश्वास नहीं हो, वो कहा करते रामपाल तो संस्कृत नहीं जानता और वो क्या जाने वेदों के बारे में, दानंद जी तो बड़े महर्षि थे, संस्कृत के विद्वान थे, सूर्य थे वो तो व्याकरण के। तो आम आदमी का यह बात बिना कहीं जच्चे थी कि वो तो महर्षि था, बड़ा विद्वान था, वेदों का ज्ञाता, तो रामपाल की बात जची नहीं आम जनता का, प्रमाण देने के बाद भी। लेकिन जो हमसे संबंधित हो गए थे पुण्यात्माएं, उनका पक्का विश्वास हो गया था। तो उन्होंने ये भ्रमित करने के लिए लिख दिया कि वो तो मित्र के बारे में लिखा है।
फिर दास ने अगले उसमें ये लिखा कि स्वामी जी खुद कहते हैं सत्यार प्रकाश के प्रथम समुलास में कि मित्र कारथ परमेश्वर ही जानो, ये वही सत्यार प्रकाश है और इसके प्रश्न नंबर 18 पे है, ये प्रथम समुलास है पर प्रश्न नंबर 18 पे है। जो सबसे स्नेह करे सबको प्रीति करने योग्य है वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है, इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो हम यहां मित्र के स्थान पर वहां परमेश्वर बोलेंगे। अब देखिए यजुर्वेद को, अब यजुर्वेद है, हम इसको यहां से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं 242 पृष्ठ पर यजुर्वेद 8वां अध्याय, ये अष्टमा अध्याय है और इसका 13वां मंत्र है। ये अनुवाद है महर्षि दानंद का। अब इसको महर्षि कहना जरूरी है ना, तुमने सोचा किसी और दानंद के बारे में बोल रहे हैं, बाकी महर्षि नहीं था ये तो दिमागी कति बोला आदमी था। हे सबके उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर आप देव करते से दान देने वाले के अप एन से माने अपराध के, एन से माने पाप के, एन से माने पाप कहो अपराध कहो, हम क्योंकि इतने अनजान हो लिए अपराध और पाप में फर्क नहीं समझ पाते जल्दी सी, लेकिन ये एक बात है। हे परमेश्वर आप दान देने वाले के पाप के अवैध जन्म माने नाश करने वाले असी माने हो, साधारण मनुष्यों के किए हुए ऐनस्य माने अपराध के यानी पाप के विनाश करने वाले हो, पिता के किए हुए ऐनस्य माने या अपराध ही होना चाहिए या पाप के विरोध आचरण के अवैध जन्म माने अच्छी प्रकार हरने वाले हो नाश करने वाले हो, अपने किए हुए ऐनस्य माने पाप के, ऐनस्य माने पाप पाप के अवैध जन्म माने नाश करने वाले हो, विनाश करने वाले अवैध जन्म माने विनाश करने वाले हो दूर करने वाले हो, एक ही बात है। ऐनस्य ऐनस्य अधर्म के अधर्म के ओहो यानी घोर पाप के भी नाश करने वाले हो, जानता हुआ मैं जो कुछ भी धर्म अधर्म आचरण किया करता हूं वा करूं, अनजान मैं जो कुछ भी किया करता हूं वा करूं, उस सर्वस्य माने सबके ऐनस्य माने पाप के दुष्ट आचरण पाप के अवजन माने नाश करने वाले हो विनाश करने वाले हो दूर करने वाले हो। अपने आत्माओं अब यू भांग प्यारता दानंद इसने अनुवाद तो कर रखा है कुछ हद तक ठीक, क्योंकि इसमें 6 बार लिख रखा है एन से माने पाप नाश करने वाले पाप नाश कर, अगर एक स्थान पर होता नहीं ऐसा गोल कर देता कहते सात जन्म सुन मना हमारा और कति ना ठहता यो इसका सत्यार प्रकाश, तो सत्यार प्रकाश कभी नहीं फेल होता। तो परमात्मा ने सारा पता था कि इसमें काल के दूत कैसे अड़ंगा अड़ाओगे, तो उनकी दाल गड़ी नहीं, कहते चोर चरावे तुम्बड़ी गड्ढे पानी में और वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे सच्चाई छानी ना। अपनी जो इनका अनुभव था वो था कि परमात्मा पाप नाश नहीं करता, ये फाइनल था इनका और यही प्रचार जनता में कर दिया। और वेद कहते हैं परमात्मा घोर पाप भी नाश कर दे, अब देखिएगा ये खुद कहता है दानंद, ये यजुर्वेद है और इसमें यहां लिखा है कि वेद सब सत वस्तुओं का, वेद सब सत विद्याओं का पुस्तक है, वेद सब सत विद्याओं का पुस्तक है महर्षि दानंद। जब वेद सत्य है, वेद तो कह रहा है कि पाप नाश होते हैं और दानंद कह रहा है कि पाप नाश नहीं करता भगवान, तो सत्यार्थ प्रकाश और दानंद का विधान शास्त्र विरुद्ध है। अपने आत्माओं अब ये वेदों के विद्वान कौन आवे और कह खेगा पता नहीं वेद क्या बताना चाहते हैं, संस्कृत भाषा के जान लेने से विद्वान नहीं बनता इंसान। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 तक 2 बार कहा गया है कि जो तत्वदर्शी संतों से पूछो वो यथार्थ ज्ञान बताएंगे परमात्मा जन्म लेता है या नहीं लेता है, साकार है निराकार। और एक भाषा के जान लेने वाले को विद्वान कहने लग जाते हैं उसको, जैसे किसी ने अक्षर ज्ञान होगा तो उसको विद्वान कहते हैं, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान बोलने लग जाते हैं। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। अब कबीर परमेश्वर महाविद्वान थे,
भले ही उसको निरक्षर कहा करते थे कि वो अक्षर नहीं जानते, लेकिन वे महाविद्वान थे और वो सब ज्ञान से परिचित थे। उन्होंने आज से 600 वर्ष पहले लिखा था, जब ही सतनाम हृदय धरो और भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने गासे। परमात्मा ने अपने सूक्ष्म वेद में सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में 600 वर्ष पहले लिख दिया था, बता दिया था कि जब ही सच्चा नाम सतनाम पूरे सम से लेकर तुम साधना करोगे सच्चे दिल से, आपके पाप ऐसे जलकर नाश हो जाएंगे जैसे बहुत बड़ी हजारों टन सूखा घास पड़ा हो और उसमें एक माचिस की सीख जगाकर उसमें ला दे, उस सारे को जलाकर राख कर देगा, चलेगी तेज हवा और कोई की कोई मारेगा पटक के, यानी स्थान भी साफ हो जाएगा। तो ऐसे परमात्मा कहते हैं आप जी के संचित कर्म और प्रारब्ध कर्मों में जो भी जहां पाप दिखेगा वही आग लगा देगा परमात्मा का ये नाम, वो सच्चा नाम यथार्थ मंत्र। इस मंत्र की अब हमें खोज होगी, हमारे सदग्रंथों में था, परमात्मा ने आकर हमें दे दिया। अब जैसे पहले फसल में खरपतवार उग जाता था वो साथ ही पला करता था, फसल उगने के बाद उसका कोई विकल्प नहीं था, अब एक ऐसी औषधि बन गई है कि उसको जल सिंचाई करते समय उसमें डाल देते हैं खेत में और वो औषधि फसल को हानि नहीं पहुंचाती, खरपतवार का नाश कर देती है। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं ये सच्चे मंत्र है, सच साधना जो आपको दी जा रही है ये आपके प्रारब्ध के पाप कर्म रूपी खरपतवार को नाश कर देगा, आपके पुण्यों को सुरक्षित रख देगा और ऐसे हम सुखी होंगे और इन्हीं पुण्यों के आधार पर भक्ति के आधार से हम सतलोक पहुंचेंगे।

0: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पॉल से खोजी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 स्थाई एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लेण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।
2: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।
3: कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
4: पुणात्मा परमात्मा क्या कहा करते थे, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बिंद्रे। अब जिसका मोतिया बिंद हो गया हो ना, उसकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देती हैं, जैसे ये खूब देखता होगा, पर उसको दिखता कतीनी नपट अंधा होता है। तो पुणात्माओं ये दिखे थे विद्वान, ये कलयुगी ऋषि दानंद और ये सतयुग त्रेता द्वापर के मैं ऋषि बृहस्पति और शुक्राचार्य, फिर अन्य देवता ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, इन सभी को अज्ञान रूपी मोतियाबिंद हो रहा था। अपने को भी इन्होंने मोतियाबिंद कर रखा था, इन अज्ञानी ऋषि में ऋषियों ने। अब हमारी आंखों का ऑपरेशन परमात्मा ने कर दिया, मोतियाबिंद हटा दिया ये यथार्थ ज्ञान के माध्यम से। परमात्मा क्या बताते हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, मोक्ष होने का जो यथार्थ ज्ञान रूपी मोती है, यानी यथार्थ तत्व ज्ञान रूपी जो धन है, वो हमें दिखाई नहीं देता। किनको? इनको नहीं दिखाई देता ये और ये दिखे थे ऐसे जब बड़े विद्वान हैं, संस्कृत भाषा आती है, वेदों को पढ़ते हैं और वेदों के मंत्र बोल के हमें ज्ञान दे रहे हैं। अब मंत्र तो बोलना वेदों के अनुवाद करें वो अपने हिसाब से, ज्ञान प्रचार कर वेदों का नाम लेकर के वो अपनी अज्ञान सिद्धांत के आधार से कि वेद कहते हैं पाप नाश नहीं होते, प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। यदि कोई दुखी प्राणी है वो सुख यानी दुख संकट निवारण के लिए ही प्रयत्नशील है, और उसको लास्ट में ये जवाब मिल जाए कि इतने ये तो भोगना ही पड़ेगा, तो वो टूट जाता है दिल उसका, वो नास्तिक हो जाता है, वो कहता कहीं भगवान नहीं है, और वो धन लाभ के लिए चोरी करने लगता है, डाके मारता है, और उनको डाकू और चोर बनाने का श्रेय इन दानद के से अज्ञानी ऋषियों को, कथित ऋषियों को है, जिन्होंने वेदों को समझा नहीं, बकवाद गढ़ दी और ना जाने कितने समाज को बर्बाद कर दिया। गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए ईब जड़े ना जाड़े। इन अज्ञान रूपी सिद्धांत पर इतने दृढ़ हो गई बूढ़ी आत्मा, इब इनको कैत भी ना मानते। मोती मुक्ता दर्शत ना ही ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चम इनका फेरा मोतिया बंदरे। इनका मोतिया बंद हो रहा था इस बृहस्पति गुरु का, शुक्राचार्य कर नकली कलयुगी आचार्य का तो जकर को नहीं, ये तो किसी खाते में नहीं थे। वर्तमान के जितने ये संत बने फिर न कह का भी नहीं पता भक्ति मार्ग का। कल आपके सामने इस बहुत बड़े ग्रुप का इतिहास दिखा दिया था, सार्वचन राधा स्वामी के सार्वचन यानी जैसे गीता का सार बता करते हुए ऐसे इनका सार था। वो सचखंड सतनाम की परिभाषा बताते हैं इसको, सतनाम सतपुरुष सार शब्द सत शब्द सतलोक सतपुरुष सतनाम कह के बोलते। पुणात्मा परमात्मा कहा करते हैं तुम कौन राम का जपते जापम तात कटे ना थारे तीनू तापम। तुम कौन से भगवानों की भक्ति करते हो जिससे तुम्हारे ये तीन ताप भी ना कटे। पुण्यात्माओं तीन ताप के अंतर्गत जैसे कोई देव रुष्ट हो जाता है या कोई ऋषि कोई व्यक्ति महर्षि श्राप दे देता है या कोई भूत प्रेत जंतर मंत्र कोई कर देता है, वो कहते हैं ना हमारा घाल घाल रखी है, ये भी तीन ताप के अंतर्गत होते हैं। तो ये भी सत भक्ति के बिना नहीं दूर होते हैं। एक समय आपने गीता जी में पढ़ा है दूसरे अध्याय के 37 और 38 मंत्र में गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू है, यदि तू युद्ध जीत गया युद्ध कर ले, यदि तू महाभारत के युद्ध में विजयी हुआ तो राज्य का सुख भोगेगा, और यदि युद्ध में मारा गया तो तुझे स्वर्ग मिलेगा। और फिर कहता है कि अर्जुन तू युद्ध कर ले तुझे पाप नहीं लगेंगे। ये देखना श्रीमद् भगवत गीता जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक दिखाते हैं, अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 37। इसमें क्या कहा है कि या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज भोगेगा। इस कारण से ही अर्जुन युद्ध के लिए निश्चय खड़ा हो जा। 38 में कहा है जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा, तेरे पाप नहीं लगेंगे। एक तो पुण्यात्माओं ये जो ज्ञान है ना इस समय गीता जी में जो ज्ञान है ये दो प्रकार का है, एक तो वेदों वाला विधान बताया है इस काल ने और दूसरा इसने अपना मत व्यक्त किया है, अपना अनुभव अपने मत के अंतर्गत इसने ये अटकलबाजी भी लाई है कि एक तरफ तो कह रहा है कि अर्जुन तू लाभ हानि छोड़ के यानी लाभ हानि की परवाह ना करे, तू जीतेगा हारेगा और युद्ध कर ले। अरे भले आदमी हो लाभ हानि के बिना कौन सिर फुड़वावे, और तुरंत ही कह रहा है कि यदि युद्ध में जीत गया राज्य का सुख भोगेगा, मर गया तो स्वर्ग जाओगे, लाभ हानि आप पे बताने लग रहा, और साथ में कह रहा है कि तुझे पाप नहीं लगेंगे युद्ध कर ले। अपने आत्माओं जब महाभारत का युद्ध पूर्ण हो लिया और युधिष्ठिर जी को राजगद्दी पर विराजमान कर दिया गया, कुछ दिनों के बाद युधिष्ठिर जी को एक भयंकर सपने आने लग गए। उसकी आंखें फटी सी रह जाती है, उसको ऐसा लगता है जैसे सिर कटे हुए व्यक्ति बिना शीश के धड़ और उनके घर में घुस रहे हैं। हाहाकार मच रही है, औरतें चूड़ियां फोड़ रही हैं, कह रही हैं कि पापी राजा तू हमारे पतियों का खून पी रहा है, तूने के मिल गया हमारे सुहाग उजाड़ के लाखों लोग मरवा दिए। उसने वो प्रेत आत्मा दिखे थी सिद्धन लाग गए, उनको हानि करने लगे। अब इन पांडवों का धार्मिक गुरु जी थे श्री कृष्ण जी, पांडवों के धार्मिक गुरु जो थे वो श्री कृष्ण जी थे। तो श्री कृष्ण जी के पास ये पांचों पांडव गए। श्री कृष्ण जी से पूछा कि हमारे भैया को ऐसे ऐसे स्वप्न आ रहे हैं, ये डरा हुआ है, खाना पीना भी छूट गया, आंखें फटी फटी सी रहती हैं, जैसे बोलता नहीं किसी से, ये गुमसुम हो गया। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने जो युद्ध में पाप किया था, वो बंदूकघात किए थे, जनता मारी थी, वो पाप दुखी कर रहा है। अब अर्जुन के तो एकदम स्ट्राइक हुई, दिमाग में झटका सा लग गया कि आज यू के कह रहा भगवान, गीता का ज्ञान दे रहे थे जब तो कह रहे थे भाई तुझे पाप नहीं लगेंगे तो युद्ध कर ले, अरे नो कहे तेरा पाप लगे तो तुमने व्यक्ति मारे। उसका समाधान क्या बताया था श्री कृष्ण जी ने कि एक अश्वमेध यज्ञ करो जिसमें अधिक से अधिक साधु संत बुलाओ, पूरी पृथ्वी के जीव को न्योता दो और एक ऐसा धर्म यज्ञ करो जिससे, और उसका एक प्रतीक बताया सफल होने का, यज्ञ सफल होने का एक लक्षण बताया कि एक पांच मुंह का पंचमुखी शंख पंचायन शंख वो अलग से सुसज्जित स्टेज पर रखा जाएगा अलग से एक स्थान पर, और जब सभी संत महंत भगत भोजन प्राप्त कर लेंगे उस भंडारे में तो वो शंख अपने आप आवाज करेगा, गूंजेगा, बोलेगा बगैर किसी के मुख से फूक मारे, ये शर्त रखती। और उसमें करोड़ों रुपये खर्च होना। अर्जुन ने सोचा यदि इस स्थिति में अब मैं ये कहूंगा श्री कृष्ण जी से कि आप गीता का ज्ञान दे रहे थे जब तक न्योको थे कि भी तुम्हें पाप नहीं लगेंगे, अब कह रहे हो तुम्हें पाप लग रहे हैं, ये दोगला ज्ञान कैसे दिया आपने हमारे साथ, ऐसा धोखा क्यों किया। तो अर्जुन ने सोचा भाई युधिष्ठिर ये सोचेगा कि मेरे ट्रीटमेंट में मेरे उपचार में ये पैसे खर्च होने हैं लाखों करोड़ों रुपये, और जिस कारण से अर्जुन ये पैसे नहीं लगाना चाहता वाद विवाद कर रहा है, मेरे को स्वस्थ होने में ये खुश नहीं प्रसन्न नहीं है, ऐसी सोचेगा अर्जुन ने सोचा। और ये ऐसा व्यक्ति है एक बार इसके मन में यह बात आ गई इलाज नहीं कराओगा मर जाएगा। अर्जुन ने अपनी छाती पर पत्थर रखा और दिन निश्चित करवाया यज्ञ का। श्री कृष्ण जी ने वो स्थान तथा तिथि दोनों निहित की, निश्चित तिथि को करोड़ों की संख्या में, कई करोड़ की संख्या में वहां भोजन पाने भंडारे में भोजन करने के लिए उपस्थित हुए 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और 9 नाथ 84 सिद्ध, 12 करोड़ ब्राह्मण और 56 करोड़ यादव। श्री कृष्ण जी के सारे चूल्हा नौ थे, वो तो गुरु जी थे, उनका सारा परिवार कुल बुला लिया, और भी पृथ्वी के बहुत से प्राणी वहां आ गए, सबके लिए भोजन भंडारा शुरू करवा दिया, सबने भंडारा खा लिया, शंख नहीं बजा। अब श्री कृष्ण जी चिंतित हुए भाई शंख नहीं बजा, युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे भगवान हमने पाप गणे कर रखे हैं, हमने इतने जुल्म किए हैं, अब मुझे याद आ रहे हैं, हाहाकार मची हुई थी, खून लाल हो गया था कुरुक्षेत्र के मैदान का, हमारा संघ हमारा यज्ञ पूर्ण हो नहीं सकता, हमने घने जुल्म कर रखे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि युधिष्ठिर संघ तो बजेगा, श्री कृष्ण जी ने भी भोजन पा लिया तो भी संघ नहीं बजा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा संघ तो बजेगा पर इसको बजाने वाला आया नहीं। युधिष्ठिर जी ने कहा भगवान ऐसे ऐसे महापुरुष बैठे, वशिष्ठ मुनि जैसी तोप बैठी, विश्वामित्र जैसे महात्मा, नौनाथ है, और ये दुर्वासा जैसे शुद्ध पुरुष और 33 करोड़ देवता राम जी ने भोजन खा लिया, अब कौन शेष है वो प्रभु इस पृथ्वी पर? तब श्री कृष्ण जी ने कहा अभी है शेष एक सुदर्शन नाम का भक्त है और वो ऐसे ऐसे वहां बनारस में रहता है, उसको क्यों नहीं आमंत्रित किया तुमने? युधिष्ठिर जी ने कहा कि उसको आमंत्रित करने के लिए उस दिशा में भीम जी की ड्यूटी थी, भीम को बुलाया गया, भीम से पूछा क्या आपने सुदर्शन जी को, एक भक्त है, उसको आमंत्रित नहीं किया? भीम जी ने कहा कि मैं उनके पास गया था और मैंने उनको अपनी सारी इंट्रोडक्शन दी कि मैं भीम हूं, युधिष्ठिर राजा का भाई पांडु, और आप जी हमारी यज्ञ में आइएगा। सुदर्शन जी बहुत कुबोल आदमी है, उसने बहुत बुरी बात कही हमारे प्रति, कहा कि तुम तो महापापी हो। सुदर्शन जी ने कहा कि भीम तुम महाघोर अपराधी व्यक्ति हो, तुमने लाखों करोड़ों बहनों के सुहाग उजाड़ दिए और तुम ठाट कर रहे हो, वो रो रही है अपने पतियों को, उनके बच्चे चिल्ला रहे हैं, पूछ रहे हमारे पिता कहाँ गए, और मुझे अगर आपके यहाँ बुलवाना है, ले चलना है, तो जैसे यज्ञ तुम करने जा रहे हो और ये तुम्हारी सफल हो जाए तो ऐसी ऐसी 100 यज्ञों का फल मुझे दो, तब मैं तुम्हारे टूक खाऊं, कोई ग्रास खाऊं, नहीं तो मैं भी पाप का भागी नहीं बनूंगा, और तुम तो महाअपराधी हो। श्री कृष्ण जी को पता था कि वो भी पहलवान है, कुछ और उठपटांग बकवाद करी होगी। श्री कृष्ण जी ने पूछा फिर आपने क्या कहा? भीम बोला मन ने न्यू कहा उसने कि तू चुप हो जा बाबा जी, ना तेरी थोपड़ी तोड़ दूंगा। मैंने आपसे भाई युधिष्ठिर से थोड़ा सा डर था ना, उसने समार का वो मैं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा और मैंने ये कह दिया था कि तू आइए से मत आइए कि तेरे बिना हमारी यज्ञ संपूर्ण ना होगी, श्री कृष्ण जी हमारे साथ है। अब श्री कृष्ण जी ने कहा भीम तने और महापाप इकट्ठा कर दिया, संतों के प्रति ऐसी दुर्भावना और ऐसे वचन बोलना भी पाप का भागी होता है, क्योंकि सुदर्शन जी वाल्मीकि जाति में जन्मे थे और परमेश्वर कबीर जी भी उस समय द्वापर युग में करुणामय नाम से प्रगट थे, सह शरीर आए थे और उनको एक वाल्मीकि दंपति, एक वाल्मीकि स्त्री पुरुष ऐसे ही कमल के फूल से उठाकर लेकर गए थे और वहां वाल्मीकि द्वारा परवरिश होने से वो कबीर परमेश्वर जी भी वाल्मीक कहलाते थे और उन्हीं से उसका एक मित्र था सुदर्शन कबीर जी का, वो यशस्वी सही था, वो परमेश्वर जी के ज्ञान से पूर्ण परिचित हो गया था, सत भक्ति करता था, तो वो सुदर्शन था जिससे कहा जाता है कि पांडवों की यज्ञ संपूर्ण हुई थी। अपने आत्माओं श्री कृष्ण जी ने कहा युधिष्ठिर यदि तुमने अपना कुछ कल्याण करवाना है और ये पाप नाश करवाना है जो आपके ऊपर 3 ताप का कष्ट है तो उस संत के बिना हो नहीं सकता, वो सतगुरु का उपासक है, सतगुरु का पुजारी है, सतगुरु यानी सच्चे संत से उपदेशी है वो। अब कृष्ण जी ने इतना तो पता था क्योंकि वो भी पुण्य आत्मा है और उनके अंदर भी परमात्मा सत प्रेरणा कबीर जी ही करते रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो उसको बना के लाओ, आत्मा जोड़ो, 500 पांडव श्री कृष्ण जी रथ लेकर चले। जब काफी दूर रह गए ना, रथ रोक दिया वहीं पर, एक योजन 3-4 किलोमीटर दूर, वहां से पैदल चले, रथ पीछे पीछे खाली आ रहा है, क्या देखा कि उधर से उस सुदर्शन जी ने सोचा, सुदर्शन जी ने कि इनकी यज्ञ पूर्ण हो को ना, क्योंकि सुदर्शन जी ने चर्चा की फिर अपने गुरुदेव से, करुणामय जी से, कबीर जी से, कहा गुरुजी ऐसे ऐसे आया था एक भीम युधिष्ठिर का भाई और उन्हें ऐसे कहा, मैंने ऐसे कह दिया। परमात्मा बोले ठीक करा, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। परमात्मा कबीर जी ने कह दिया था भाई इनकी यज्ञ पूर्ण ना हो अपने बिना, अपने बिना ना हो बेटा, इन्हें खाण दे धक्के। सुदर्शन जी ने सोचा ये फिर आवेंगे, गुरु जी कह रहे हैं यज्ञ तो पूर्ण हो को ना, अरे ये तने फिर दुखी करेंगे, वो पाप का भागी बनेगा, उनका भोजन खाना पड़ेगा। अब सुदर्शन जी तो करके ऐसे विचार निकल गया शहर से पट्टे को, महीने 20 दिन की यात्रा पे, उधर से परमेश्वर कबीर जी करुणा में सुदर्शन रूप धारण करके अपने शिष्य का और सुदर्शन वाली झोपड़ी में विराजमान हो गए। अपने आत्माओं ऑटोमेटिकली होता ही हो, समर्थ शक्ति सामने बैठी श्री कृष्ण जी तो तीन लोक के भगवान, वो असंग ब्रह्मांडों का स्वामी। श्री कृष्ण जी ने जाते ही दंडवत प्रणाम किया, साथ में पांचों पांडवों ने और पहलवान भीम ने भी कराया जो श्री कृष्ण जी ने कर दिया था। अब श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्रभु ये भगवान इन पांडवों ने एक यज्ञ किया है, आप कृपा उसमें पदार्पण कीजिए, आपकी इंतजार है, आपको आमंत्रित करने आए। तो सुदर्शन रूप में विराजमान प्रभु ने कहा कि मैंने इस पहलवान से कहा था मेरा वो काम पूरा करो। क्या कहा था कि 100 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मुझे दो तब मैं वहां चलूंगा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्रभु आपकी वाणी है, संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ है यज्ञ समान। क्योंकि परमेश्वर कबीर जी ने चारों युगों में ये सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी बोली थी, इसको ना समझ कर रिजेक्ट कर दिया, वेदों को ही हम सिरोधार्य मानते रहे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्रभु आप जी की वाणी है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि भगवान आपकी वाणी है, हम आपके, अब देखो ये पांचों पांडव हैं, इनकी तो छक्के बेइज्जती होगी क्योंकि वो यज्ञ पूर्ण नहीं हो रही, अब इनके लिए तो धरती छोटी सी हो चुकी है, इम अभिमान कति नहीं, युग युग खड़ा पहलवान देख लो, अब वो हाथ जोड़े खड़े नो। परमात्मा कहते हैं कि ये द्वारकाधीश आप मेरे अंदर झांक कर देख लो प्रभु, आप तो अंतर्यामी हो, हमारे अंदर कोई आज इन पांचों में और मुझ में कोई अभिमान नहीं है किसी वस्तु का, और जितने भी कदम वहां से यहां तक हुए हैं आपकी वाणी अनुसार इतने यज्ञ हो गए, इनमें से आप 100 रख लो, बाकी हम दीनों की झोली में डाल दो। कहते साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना, मालिक ने देखना था ये योग्य हो गए कि नहीं, थोड़े बहुत दिन या कड़े ठीक हो। अभिमान सबसे बड़ा शत्रु है भक्ति मार्ग में, वहां खड़े वो पांचों पांडवों की घिघी बंध रही थी, जब नाट गया तो नाश हो जाएगा, नुकति करबद्ध खड़े पांचों के पांचों। तो परमात्मा बोले चलो, अब पहले जब ये भीम गया था ना, पहले नौता देना था, बकवाद गणी करे था, अपना अंगा दिखाओ था, सुदर्शन जी से कह रहा था कि तू के बोल रहा है बाबा जी कि युद्ध के न्यो जीत्या जा है, एक का मारू था गदा 6 पड़े थे, न्यो जीत्या था हमने युद्ध। वो स्नान करके आया था संत से मिलने से पहले एक तालाब में, कबीर परमेश्वर ने बताया फिर सुदर्शन रूप में कि पहलवान जब तू आया था और स्नान करके आया था ना एक तालाब में, कहा जी, और तू क्या कह रहा था मैं एक का मारू था गदा 20 मरे थे, इतना ताकतवर हूं मैं तेरे जैसे, तो करा कितने को गए जा लिए। अब जिस तालाब में तू स्नान करके आया है उसमें तेरे पैर भी नहीं टिके, इतना जल है कहां जी, वो कुंभकर्ण की खोपड़ी है, सरका ये ऊपर का हिस्सा इतना, तेरे के तो उसका आगे कुछ भी कोनी के पहलवान पा कर है, तेरे कैसे बड़े बड़े होकर जा दिए। कहते मर्द गर्द में मिल गए वह रावण से रणधीर, और कंस के सी चाणूर से वो हरना कुछ बलबीर, तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म दर लेत, गरीब दास हरी नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। वो कहने लगे सचमुच महाराज जी वो कुंभकर्ण की खोपड़ी थी, खोपड़ी थी नहीं जा देखा फिर जाके, वो देखा हुई इतना मोटे वो द्वार उसकी चोर देखी, वो खोपड़ा न्योगा न्यू पड़ा रह तरा गजब हुई हो। तो इंसान ये जीव जीव ही होता है, अभिमान इसको स्वाभाविक हो जाता है, थोड़ा सा सुख शारीरिक बल या कोई बाहुबल या कोई सेना का बल हो जाती है धरती तोल देता है, फिर इसका भोग भी इसको भोगना पड़ता है। कहने का भाव यह परमात्मा ने कहा कि ला या मेरी सुमरणी उतार दे। वहां खुट्टी पे एक माला टंग रही थी उस सुदर्शन की, और भीम से कहा भीम ये माला उतार कर दे, चल मैं चलता हूं फिर चलेंगे तुम्हारे वहां। अब भीम ने वह माला ने आसानी से उतारनी चाहिए वह ना उतरी, कति दोनों हाथ ला लिए पसीने आ गए, वह उटस से मसना हो पतली सी वह। अब परमात्मा बोले रहे तू क्यों कह था मैं बड़ा बलवान हूं एक न मारू था और 6 मरे थे, या माला ना उतरती पहलवान तेरे थे नो देखे मटर मटर ने बोले आ जा बैठ जा। और परमात्मा ने हाथ कराया था अपने आप उतर का आएगी माला हाथ में, तो उनका जो पेटा सा भरना था कि ऐसी इनका उलत नहीं गिगी ना पंजीरा कदे यो भी साय पावे। अब क्या कहते हैं, धर्मदास जी को परमात्मा ने कहा कि धर्मदास वो संत नहीं जो चमत्कार करे, और भाई वो संत भी नहीं जिससे चमत्कार ना हो, यानी जैसे ही आप जी दुखी आते हो और सुख मिलता है, आपकी सच्ची श्रद्धा सच्ची लगन होगी, नाम लेते ही राहत मिलनी शुरू हो जाएगी आपको। यहाँ कोई नू ना कहते कि भी जात रेन्यू हो जाएगा, जात रेन्यू कर देंगे, हानि लाभ नहीं कर सकते हम, ना ऐसे करते कभी। तो ऐसे जो कहता है ऐसे करता वो संत नहीं है। और जिस संत से कोई चमत्कार ना हो, जो है अद्भुत कृष्मे ना हो, ना होने के काम ना हो, वो संत नहीं। तो परमात्मा ने कहा था कि धर्मदासिया घना अंधेरा और बिन परचय जीव जम का चेहरा, यदि मैं इनको राहत ना दूं, अपनी शक्ति का थोड़ा बहुत प्रदर्शन ना करूं, तो ये काल के ते अट्टे को ना, ये काल के चिपके रहेंगे अपने पास, आवे कौन बेटा। तो परमात्मा ने वो छोटा सा एक परिचय दिया था अपना कि भाई हम भी कुछ कर जाएंगे चल, तो उनका इन थोड़ा सा विश्वास हुआ महात्मा के तो चाड़ा है। अब क्या हुआ पुण्यात्माओं, कबीर जी की कैसी वेशभूषा थी सुदर्शन के रूप में, जैसे आदिवासी हुआ करते थे पहले, लांडी सी धोती, घुटना तो थोड़ी सी नीचे था, एक दोहरी लांगड़, टूटे है जूते, सिर के बाल छोटे छोटे, दाढ़ी बढ़री, और इसे मैले कुचेले से कपड़े, जैसे कई दिन नहाए हो गया हो। और जो ही वो उन सभा में प्रवेश हुआ जहां 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि मंडलेश्वर बैठे थे, नो अंडी पाके कति सज दज के बटे उबने बैठे थे, और उनमें देखा कि यू कौन आ गया, ये लाए है कि वो है, यू आया है कि यज्ञ संपूर्ण करेगा, अपने कपड़ों को मुंह में ला के रास्ते तले तले नो अगे लाए है, ढूंढ गए, यू करेगा इनकी यज्ञ पूरी। उधर से द्रौपदी से श्री कृष्ण जी ने कहा कि द्रौपदी बहन आप बढ़िया भोजन बनाओ, इस संत से तुम्हारी यज्ञ संपूर्ण होगी। अब द्रौपदी जी ने बहुत ही प्यार से श्रद्धा से भोजन तैयार किया, क्योंकि बात कति अड़ी पड़ी थी। तो वैसे भी स्वभाव होता है घर पर कोई अतिथि आ जाता है तो बहन बेटियां प्रतिदिन बनाने वाले भोजन से हटकर भोजन बनाती है, और बहुत सावधानी से कहीं इसमें नमक मिर्च कम ज्यादा ना हो जाए, और खाने वाला तेरे द्वारा बनाए गए भोजन को कहीं बिसरा ना दे कि तौर जाके हैं तेरी बेइज्जती हो, इसलिए बहुत अच्छा भोजन बनाती हैं, और खाना खाने वाले से इंतजार करती हैं ये कुछ टिप्पणी करे या ना करे तो वो भी ठीक जन्यू कह देख नमक थोड़ा सा या मिर्च गणी है तो बनाने वाली बहन बेटी कह आत्मा में कष्ट बहुत होता है। तो साधु संत क्या करा करते है? वो चाहे कुछ भी होता किसा भोजन किसी घर पर बन रहा होता वो कभी बिसराया नहीं करते, नहीं करते वो कमाल हो बहुत बढ़िया भोजन बना चाहे नमक भी ना हो। तो उधर से द्रौपदी जी ने इस दृष्टिकोण से बड़े सुंदर पकवान बनाए, न्यारे खीर हलवा कचौड़ी पकौड़ी दाल सब्जी कई प्रकार की सब्जी, माल पूड़े बूरा मंडे ये हर तरह के जलेबी लड्डू कचौरी सब बना रहे थे, और अलग अलग से एक बहुत बड़ी थाली में थोड़ा थोड़ा आइटम रख के और महात्मा जी के सामने खाने के लिए परोस दिया, सर्व कर दिया। अब महाराज जी ने सोचा हमें उदाहरण देने के लिए आम व्यक्ति के लिए, उसने सोचा कि भाई आज तक यो मन ये जीभ चठोरी कर लेगा, नाना प्रकार के नारे नारे स्वाद लेगा, यू तड़के फिर मांगेगा कल ने कितने लावांगे इसने घास फूस खानी आदमी हम। तो उसने क्या किया सतगुरु ने, अब मैं सुदर्शन ही कहूंगा क्योंकि वो सुदर्शन का रोल कर रहे थे। अब सुदर्शन जी ने क्या किया, उस सारे आइटमा में थे थोड़ा थोड़ा आइटम उठा के अपना अलग से थाली में डाल लिया और उन सबको इकट्ठा कर लिया, दाल भी सब्जी भी लड्डू भी जलेबी भी हलवा भी कचौड़ी भी पूरी भी सब कट्ठी तोड़ ताड़ के। अब द्रौपदी धन्यो बाट देखे थी बाबा जी उंगली चाटता रह जाएगा और तेरे गुण गावेगा भी वाह भाई वाह बहुत बढ़िया भोजन बनाया, बहुत सुंदर स्वादिष्ट पदार्थ है, 36 व्यंजन डाल रखे हैं। और जब उसने सारा ही मिला दिया तो द्रौपदी ने सोचा कि यो अच्छा रहा सूदर का सूदर ही, इसने खाना भी ना था, मन मन में इतना दोष कर दिया, यो कहे की शंख बजाओगा, इसने खाने का भी ना बेरा गलीज। तो यमन बड़ा उस्ताद, एक मिनट में पता नहीं किक के बकवाद कर जाता है। और वो तंत्रयामी थे कि द्रौपदी ने अभिमान हो गया अपने पकवान का, और द्रौपदी का अभिमान भी समाप्त करना था। तो ऐसे उन्होंने 5 बार में जैसे एक ग्रास बनाया, फिर दूसरा, 5 ग्रास में सारा भोजन खा लिया। पहला जब ग्रास खाया तो शंख ने 1 बार आवाज करी, दूसरा किया तो दूसरी बार करी, तीसरी बार खाया तीसरी बार भी आवाज करी, 5वीं बार में सारा भोजन खा लिया। तो 5 बार शंख बाज के बंद हो गया। अब 5 पांडवों का उत्साह बढ़ गया। युधिष्ठिर कहने लगा, भगवान बड़ी दया करी, आपकी दया से शंख बजते गया। अब कृष्ण जी कहने लगे, भाई शंख बज गया लेकिन यज्ञ पूर्ण ना हुई, यो शंख तो बहुत देर तक बजना चाहिए था, जब यज्ञ पूर्ण होगी अखंड बजना चाहिए कई घंटे थे। अरे तो 5 बबोल का बंद हो गया, कोई बात बनी नहीं। युधिष्ठिर फिर पकड़ गया, बैठ गया कलेजा पकड़ के, हे भगवान अब किसने बुलाओगे, अब कौन रह गया खाना खाए बिना। तब कृष्ण जी कहने लगे, कोई नहीं रह रहा भाई, ये जो सामने बैठे ना महापुरुष, ये के वाल्मीकि दिखे है, इसके एक बाल के समान भी 3 लोक नहीं है, ये इतना सिद्धि संपन्न शक्ति संपन्न महापुरुष है। पर भाई कोई गलती अपने तो बनी है। कृष्ण जी ने द्रौपदी से पूछा, बहन सच्ची बताइए, तू जब इस महाराज जी खाना खा रहा था और इसमें सारे आइटम इकट्ठे कर लिए, तेरे मन में कोई दोष आया था? अकां जी दोष आ गया। द्रौपदी ने सच्ची बता दी, मन ने और बात कह दी मन मन में। तो कृष्ण जी कहने लगे, ये तेरी अमरोड काट रहे थे, ये तेरे बड़ने सीधा करे थे, जो तेरे में बकवाद भर रखी थी, ना तो इस महापुरुष के खाना खाने से शंख ना बजे। ने बोले, कृष्ण जी कहने लगे, पैर धोकर पीस के इतने वाल्मीकि सा दिखे है, लियाई परात ठा गए बढ़िया सी जल लियाई, और उस वाल्मीकि थी जिसने सुदर्शन के यानी परमात्मा थे वैसे, लेकिन वहां वो रोल वो कर रहे थे। द्रौपदी ने अपने हाथों चरण धोए, वो मैल धूल युक्त और गाल के लोटे में पीण लाएगी, आधा पी लिया। जब श्री कृष्ण जी ने कहा कि बहन मुझे भी दे दे थोड़ा सा इसे महापुरुष का चरणामृत, और कब कब मिले, आधा द्रौपदी ने पिया आधा श्री कृष्ण ने, और शंख अपने आप एकदम बहुत जबरदस्त आवाज करी, और कहते हैं उस शंख की आवाज स्वर्ग तक गई, और उसके कारण बेमौसम में फूलदार पौधे फूलों से

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयरडील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयरडील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दे कस्टम किचन बार्स वॉशरूम वैनिटी क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लों होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लों होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने घरां ते कारां दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसीं अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 Trent Avenue, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामां संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लैण लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2332 32nd Avenue North East Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हों तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983, 825-760-0983।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंड

0: सलाह डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिम्मे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नू 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। कैलगरी दे इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हुन सर्वन कर दिया श्री हरमंदर साहब अमृतसर तो श्री रहरा साहब जी दे पाठ। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
2: हर जोग जोग

तेरांतना परावरया। रागासा महला चौथा। सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगमा पारा। सब त्याव है सब त्याव है तुद जी हर सच्चे सृजनहारा। सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा। हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारन हारा। हरा पे ठाकुर हरा पे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाना। एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज बडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी हाँ तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुणाख बखाणा। जो सेव है जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्याव है हर त्याव है तुद जी से जान जुग मह सुखवासी। से मुक्त भये जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी। जे निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिनका पाओ सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता। तेरी अनक करै हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंता। तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड अवर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करह सो होई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जान ओई। आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैडा साई जो तो पावै सोई थीसी। जो तू दे सोई हों पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनो कृपा करहें तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप बिछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल बिजोग मिले बिछुड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने। जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेख है जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला तित सरवर।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवें कवियो वाच बेनती चौपाई हमरे करो हाथ रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण नमन रहा हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सवै तुम काव हो आप हाद मोहे बिचाव हो सुखी बसा मोरो परवारा सेवक सिख सभा करतारा मोर अच्छा निज करदा करिया सब बैरन को आज संघरिया पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याओ जो वर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ द मुझे अवरिया मरण काल का त्रास निवरिया पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तोज जु करिहो रक्षा राख ले हो मोहे राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के अंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन उपजायो आद अंत कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी शिव कन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोह बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर स्थूला सा पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान घट घट के पट पट की जान जावुद करख करा कर तारा प्रजा धरत तब देह अपारा जावया करख करत हो कबहू तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते वादन सृष्ट सब तारै आप आपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अरालम निरंका निर्विका निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूढ़ चारत भेदा जाको भेवना पावत भेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा।

दुष्ट दोख ते ले हो बचा खड़ग के त मैं शरण तिहारी आप हाथ दले हो सर्ब ठौर मोह सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया पाएंगे हे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने हो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक ना माने हो सिमरत शास्त्र वेद स्वै बहु भेद कह हम एक ना जाने हो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तोहे बखाने ओ दोहरा सग

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां पाया सह सेती मन वजियां बाधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां, शब्दों तां गावो हरि केरा मन जनी वसाया। कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले, हर नाल हो तू मन मेरे दुख सावे सारना। अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारना, सबना गल्ला स्मृत स्वामी सो क्यों मनहो बिसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा क्या नाहीं घर तेरै, घर तां तेरै सब किश है जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनकै मन वसिया बाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहेब क्या नाहीं घर तेरै, साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाईया। कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सा पूजाईया। सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दी आए बड़ियाईया। कह नानक सुनो संत हो शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो बाजे पंच शब्द तित कर सुभागै, कर सुभागै शब्द बाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख होआ तित घर अनहद वाजे। आनंद

दुख हरता यह बिद को स्वामी तै काहे बिसराया। जावहि शरण गहि कृपा निध,

करनो राम कहत बंधन तेह छूटा महिमा नाम कहाँ लो बरनो राम कहत बंधन ते टूटा अजामल पापी जग जाने निमख माहे निस्तारा।

नानक कहत चेत चिंतामन तैपी उत्तर पार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।